0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
8: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड
8: 01274201679। UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
5: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
6: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
2: To Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
3: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
4: You're listening to Bradford Asian Radio,
2: 1413 AM and online.
0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
10: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
9: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
10: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
9: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
10: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स।
9: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
11: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
10: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
9: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 3499, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
10: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
9: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
9: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
10: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
9: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
10: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
9: 07548419678।
10: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 14:13 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: You're listening to Bradford Asian Radio,
2: 1413 AM and online.
0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grant Road, Bradford 7414760.
1: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
2: आपको नहीं पता? ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट,
3: सलाद, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413

0: आजान का वक्त हुआ चाहता है इस आजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: आजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती आजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد.

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बोबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी,
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

بهم ما خلق الله السماوات

خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
10: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम, सेफ राइडर।
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए।
7: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड 01274201679।
10: saferaider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
2: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
3: ओपन 7 डेज 10 टिल 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पौंड ब्रैडफोर्ड, 9627229627222।
2: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
8: Listen on your PC or laptop, the best Asian music online.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: Arsenal. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
3: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
4: You're listening to Bradford Asian Radio,
2: 1413 AM and online.
0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
10: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
9: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
10: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
9: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
10: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स।
9: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
11: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
10: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
9: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
10: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
9: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 2600 78।
12: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज़ सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो,
13: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
13: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: You're listening to Bradford Asian Radio,
2: 1413 AM and online.
0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

آخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير

ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ

0: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإن
1: You're listening to Bradford Asian Radio
2: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
3: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
4: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
9: बालियां अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स,
12: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स।
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 2600 78।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444. Or donate online at ikca.org.uk.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
10: बस ट्रक फोकलिफ्ट
11: टैक्सी लाइसेंस,
10: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड
10: 01274201679। UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
5: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
6: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
10: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
9: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
10: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
9: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
10: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स।
9: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
11: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
10: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
9: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 3499, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
10: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
9: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
9: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
10: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
9: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
10: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
9: 07548419678।
10: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
2: Ya Allah, jo shakhs rozana 1000 martaba is isme mubarak ko padhega, inshaallah uske dil se tamam shak o shubha dur ho jayenge aur azm o yaqeen ki quwwat naseeb hogi. Jo la ilaaj mareez ba kasrat is isme mubarak ka wird rakhe aur iske baad shifa ki dua mange, usko shifae kamil naseeb hogi.
3: Ya rahman,
2: behad rehm karne wala, jo shakhs rozana har namaz ke baad 100 martaba is isme mubarak ko padhega, uske dil se inshaallah har qisam ki sakhti aur ghaflat dur ho jayegi aur iska hafza qawi ho jayega.
3: Ya rahim,
2: eh bada meherban, jo shakhs rozana har namaz ke baad 100 martaba is isme mubarak ko padhega, tamam dunyavi aafaton se inshaallah mehfooz rahega aur tamam makhlooq us par meherban ho jayegi.
3: Ya malik,
2: ae haqeeqi badshah, jo shakhs rozana subah ki namaz ke baad kasrat se is isme mubarak ko padhega, Allah taala use ghani farma denge.
3: Ya quddus,
2: eh buraiyon se paak zaat, jo shakhs is isme mubarak ka wird rozana 100 martaba karta rahega, usse Allah taala tamam tafarruqat se nijat denge.
3: Ya salam,
2: ae be-ebzad, jo shakhs kasrat se is isme mubarak ko padhta rahega, inshaallah tamam aafaton se mehfooz rahega. Jo shakhs 160 martaba is isme mubarak ko padhkar bimar par dam karega, Allah taala use sehat o shifa ata farmayenge.
3: Ya mu'min,
2: ae amn o iman dene wale, jo shakhs kisi khauf ke waqt 631 martaba is isme mubarak ko padhega, inshaallah har tarah ke khauf aur nuksan se mehfooz rahega.
3: Ya muhaimin,
2: ae nigehban, jo shakhs ghusl karke do rakat namaz padhe aur sidq dil se 100 martaba is isme mubarak ko padhega, to Allah taala uska zahir o batin paak farma denge. Aur jo shakhs 115 martaba padhega, to inshaallah poshida cheezon par matla ho.
3: Ya aziz,
2: ae sab par ghalib, jo shakhs is isme mubarak ko namaz e fajr ke baad 41 martaba padhta rahe, wo inshaallah kisi ka mohtaj na ho aur zillat ke baad izzat paaye.
3: Ya jabbar,
2: ae sabse zabardast, jo shakhs is isme mubarak ka wird baqaidgi se karta rahega, उसे कोई उसकी मर्जी के खिलाफ किसी काम के लिए मजबूर नहीं कर सकता और ना उस शख्स को तशद्दुद सख्ती और दुश्वारी का सामना करना पड़े।
3: या मुतकब्बिर
2: ऐ बड़ाई और बुजुर्गी वाला, जो शख्स कसरत से इस्मे मुबारक का विद रखेगा अल्लाह ताला उसे इज्जत और बड़ाई अता फरमाएंगे, और अगर हर काम की इब्तिदा में इस्मे मुबारक को पढ़े तो इंशाअल्लाह उसमें कामयाब होगा।
3: या खालिक
2: ऐ पैदा करने वाला, जो शख्स सात रोज तक मुतवातिर 100 मर्तबा इस्मे मुबारक को पढ़ेगा इंशाअल्लाह तमाम आफतों से महफूज रहेगा। जो शख्स हमेशा इस्मे मुबारक को पढ़ता रहे तो अल्लाह पाक एक फरिश्ता पैदा कर देते हैं जो उसकी तरफ से इबादत करता है और चेहरा मुनव्वर रहता है।
3: या बारी
2: ऐ जान डालने वाला, अगर बांझ औरत 7 रोज रोजे रखे और पानी से इफ्तार करने के बाद 21 मर्तबा इस्मे मुबारक को पढ़े तो उसे इंशाअल्लाह औलादे नरीना नसीब हो।
3: या मुसव्विर
2: ऐ मखलूकात की सूरत गरी करने वाला, अगर बे औलाद औरत इस्मे मुबारक पर यूं अमल करे के 7 रोजे रखे और हर रोज इफ्तार के वक्त इन 3 नामों को यानी या खालिक या बारी या मुसव्विर 21 मर्तबा पढ़कर 1 गिलास पानी पर दम करे और इस पानी से इफ्तार करे तो इंशाअल्लाह उसे औलाद हासिल होगी।
3: या गफ्फार
2: ऐ दरगुजर और पर्दा पोशी करने वाला, इस्मे मुबारक का बाकायदगी से विर्द करने से अल्लाह ताला की मग़फ़िरत हासिल होती है।
3: या क़हार
2: ऐ सबको अपने काबू में रखने वाला, जो शख्स दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो वो कसरत से इस्मे मुबारक को पढ़े तो इंशाअल्लाह दुनिया की मोहब्बत उसके दिल से दूर हो जाएगी और खुदा की मोहब्बत पैदा हो जाएगी।
3: या वहाब
2: ऐ सब कुछ अता करने वाला, जो शख्स फिक्रो फाका में गिरफ्तार हो वो कसरत से इस्मे मुबारक को पढ़ा करे या लिखकर अपने पास रखे या चाश्त की नमाज के आखिरी सजदे में 40 मर्तबा इस्मे मुबारक को पढ़ा करे तो अल्लाह ताला फिक्रो फाका से उसको हैरत अंगेज तरीके पर निजात देंगे।
3: या
2: बहुत बड़ा रोजी देने वाला, जो शख्स इस्मे मुबारक का विर्द करता रहे परवरदिगार आलम उसकी किफालत अपने जिम्मे ले लेता है।
3: या फत्ताह
2: ए बहुत बड़ा मुश्किल कुशा, जो शख्स इस्मे मुबारक का विर्द बाकायदगी से करता रहेगा उसका दिल खोल दिया जाएगा और उसे पता नसीब होगी। ऐ बहुत वसी इल्म वाला, जो शख्स कसरत से इस इस्मे मुबारक का विर्द करेगा, अल्लाह ताला उस पर इंशाअल्लाह इल्म और मारिफत के दरवाजे खोल देंगे।
3: या काबिग,
2: ऐ रोजी तंग करने वाला, जो शख्स रोटी के चार लुकमों पर इस इस्म को लिखकर 40 दिन तक खाएगा, भूख प्यास जख्म और दर्द वगैरह की तकलीफ से महफूज रहेगा।
3: या बासिक,
2: ऐ रोजी फराह करने वाला, जो शख्स नमाज़े चाश्त के बाद आसमान के जानिब हाथ उठाकर रोजाना 10 मर्तबा इस इस्मे मुबारक को पढ़ेगा और मुंह पर हाथ फेरेगा, अल्लाह ताला उसे गनी बना देंगे और कभी किसी का मोहताज ना होगा।
3: या खौफिग,
2: ऐ बस कर देने वाला, जो शख्स रोजाना 500 मर्तबा इस इस्मे मुबारक को पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी हाजतें इंशाअल्लाह पूरी और मुश्किलात दूर फरमा देंगे। जो शख्स 3 रोजे रखे और चौथे रोज एक जगह बैठकर 70 बार इस इस्मे मुबारक को पढ़े, इंशाअल्लाह दुश्मन पर फतेहयाब होगा।
3: या
2: ऐ बुलंद कर देने वाला, जो शख्स इस इस्मे मुबारक का दिन और रात में 101 मर्तबा विर्द करेगा, अल्लाह ताला उसको इज्जत दौलत और अहलियत में बुलंदी अता करेंगे।
3: या मुइज,
2: ऐ इज्जत देने वाला, जो शख्स पीर या जुम्मे के दिन बाद नमाज मगरिब 140 मर्तबा इस इस्मे मुबारक को पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको इंशाअल्लाह लोगों में बा इज्जत और बा वकार बना देंगे।
3: या मुजिल,
2: ऐ जिल्लत देने वाला, जो शख्स 75 मर्तबा इस इस्मे मुबारक को पढ़कर सरबा सुजूद होकर दुआ करेगा, अल्लाह ताला उसको हासिदों जालिमों और दुश्मनों के शर से महफूज रखेंगे।
3: या समीउ,
2: ऐ सब कुछ सुनने वाला, जो शख्स जुमरात के दिन चाश्त की नमाज के बाद 500, 100 या 50 मर्तबा इस इस्मे मुबारक को पढ़ेगा, इंशाअल्लाह उसकी दुआएं कबूल होंगी, दरमियान में किसी से बात हरगिज ना करे।
3: या बसीर,
2: ऐ सब कुछ देखने वाला, जो शख्स जुम्मे की नमाज के बाद 100 मर्तबा इस इस्मे मुबारक को पढ़ा करे, अल्लाह ताला उसके निगाह में इंशाअल्लाह रोशनी और दिल में नूर पैदा फरमाएंगे।
3: या हकम,
2: ए हाकिम मुतलक, जो शख्स इस इस्मे मुबारक का विर्द कई दफा रात को करता रहेगा तो अल्लाह ताला उस पर बहुत से राज, ए हाकिमे मुतलक, जो शख्स इस इस्मे मुबारक का विर्द कई दफा रात को करता रहेगा,

0: Line.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
5: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
6: बालियां अंगूठियां और हार,
5: जो दुल्हन करे सिंगार,
6: आज ही मामू काके की दुकान,
5: खालिस सोने की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
6: आपकी शान
5: हमारी आन,
6: क्वालिटी की पहचान।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
7: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
6: सोफी ज्वेलर्स?
7: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
6: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
8: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760.
1: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
2: आपको नहीं पता? ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
1: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश। मैनिंगम सुपर स्टोर,
2: मैनिंगम सुपर स्टोर,
3: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
3: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop, the best Asian music online.
7: You're listening to
8: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
10: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
9: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
10: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
9: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
10: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स।
9: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
11: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
10: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
9: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
10: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
9: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 2600 78।
12: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी।
13: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाई दिल नवाज,
14: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
13: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
14: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
15: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: सुपर स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
1: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
0: नित नए डिजाइन के सेट्स, चूड़ियां कंगन कांटे,
1: बालियां अंगूठियां और हार,
0: जो दुल्हन करे सिंगार,
1: आज ही मामू काके की दुकान,
0: खालिस सोने की पहचान,
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
0: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
1: आपकी शान
0: हमारी आन,
1: क्वालिटी की पहचान।
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane Bradford BD95ER 0127449144 2।
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
2: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
1: सोफी ज्वेलर्स?
2: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
1: सोफी ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane BD94 QU 0127405601 4। सोफी ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
0: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
1: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
0: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
1: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
0: 33 Wetley Lane Bradford 01274209।
1: safewayrider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
0: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली $299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बोबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260 07 8।

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
2: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
3: ओपन 7 डेज 10 टिल 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड ब्रैडफोर्ड, 9627229627222।
2: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
8: Listen on your PC or laptop, the best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577।
8: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online. This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान।

0: खालिस सोने की पहचान
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
0: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
1: आपकी शान
0: हमारी आन
1: क्वालिटी की पहचान
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड PD95ER 01274491442
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
2: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
1: सोफी ज्वेलर्स?
2: सोफी नहीं सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
1: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स।
3: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
0: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is... Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
7: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
7: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बोबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online. This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ओकलेन BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तक

0: हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
1: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
0: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
2: टैक्सी लाइसेंस,
0: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
1: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
0: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
1: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
0: safewayrider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
1: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
0: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
5: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स।
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 26007 8। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
8: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
9: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
8: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
9: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
8: 07548 419 678।
9: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
11: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
12: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
11: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
12: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
13: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: यू आर लिसनिंग टू ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: 1413 AM एंड ऑनलाइन।
14: इल्मो नजर से मावरा अपने हरीम ज़ात में, इल्मो नजर के रूबरू आईनाए सिफात में, जलवा नुमा है रोज़ शब एक नई अदा के साथ, तुझको जहाँ भी देखिए आलिम शश जहात में। तेरी किताब के सिवा देख चुका मैं शर्क व गर्ब, कुछ भी ठहर नहीं सका सेले तगैरात में। अक्ल है आज भी अगर अपने जनों की नक्श बन, इश्क भी तो असीर है अपनी ही वारदात में। तेरे कलाम में कोई हर्फ कहाँ था पेश का, मैं ही उलझ के रह गया अपने तोहमात में। दस्ते फरंग में तेरे मीनाओं जाम वाजगूं, क्या नहीं और मैं कहीं मैं कदाए हयात में। तेरे करम से पै बा पै उतरे हैं आसमां से आज, قافلہ ہائے رنگ و بو میرے تخیلات میں، علم و نظر سے ماورا اپنے حریم ذات میں، علم و نظر کے روبرو آئینہ صفات میں، جلوہ نما ہے روز و شب ایک نئی ادا کے ساتھ، تجھ کو جہاں بھی دیکھیے عالم شش جہات میں، تیری کتاب کے سوا دیکھ چکا میں شرق و غرب، کچھ بھی ٹھہر نہیں سکا سیل تغیرات میں، عقل ہے آج بھی اگر اپنے جنوں کی نقش بند، عشق بھی تو اسیر ہے اپنی ہی واردات میں، تیرے کلام میں کوئی حرف کہاں تھا پیچ کا، میں ہی الجھ کے رہ گیا اپنے توہمات میں، دستے فرنگ میں تیرے میناؤں جام واش گوں، کیا نہیں اور میں کہیں میں کدائے حیات میں، تیرے کرم سے پے با پے اترے ہیں آسماں سے آج قافلائے رنگ و بو میرے تخیلات میں۔ معزز سامعین کرام، ہیلو اینڈ السلام علیکم، اس وقت آپ پر سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ، یہی نشریات سامعین کرام پہنچتی ہیں آپ کے پاس ڈیپ کے ذریعے، اور اس کے علاوہ آپ آن لائن بھی ہماری نشریات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے موبائل فون پر آپ ہمارا ایپ فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ کیجئے، خواہ آپ اینڈرائڈ فون رکھتے ہیں یا آپ کے پاس آئی فون ہے، ہمارا ایپ فری آف کاسٹ ہے، اسے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور پھر جہاں کہیں بھی موجود ہوں آپ ہماری نشریات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ حسب معمول حسب وعدہ آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان اسماء اشفاق، پروگرام انتخاب کے ہمراہ یہاں موجود ہیں ہم، اور ہمیشہ کی طرح پر امید اور دعا گو کہ آپ جہاں کہیں بھی موجود ہیں بخیریت ہیں، شاد و آباد ہیں، اور آپ ہمارے جو ہے بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ساتھ ساتھ ہیں۔ سامعین کرام، پروگرام کی ترتیب و تفصیل سے بھی آپ کو ہم آگاہ کرتے چلیں کہ ہمیشہ کی طرح کچھ ملے جلے خوبصورت سے گیت، کچھ ہماری پسند کے، کچھ آپ کی فرمائش پہ ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں اس پروگرام میں، ساتھ ہی ساتھ آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے کچھ شعر و شاعری، منتخب شعرا کا متفرق کلام جو ہے وہ ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں گاہے بگاہے اپنے پروگرام میں، تاکہ آپ کے ذوق کی تسکین ہوتی رہے، اور ہمیں بھی ظاہر ہے شعر و شاعری بہت زیادہ پسند ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تاریخی اور اکثر کنوں کی تاریخی واقعہ آپ کے گوش گزار کیا جاتا ہے، جس سے آپ محظوظ بھی ہوتے ہیں، مستفیض بھی ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ سبق آموز تو ہوتا ہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، خواہ وہ کوئی شاعر، کوئی دانشور، کوئی ادیب، کوئی سائنٹسٹ، کوئی ہمارے جو انبیاء کرام ہیں، جو اور ہمارے دوسرے دانشور لوگ ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی چھوٹی سی خاص بات ہم اپنے اس پروگرام میں ضرور شامل رکھتے ہیں۔ آج کی چھوٹی سی خاص بات کے عنوان سے ان کے جو اقوال زری ہیں، جو سنہرے حروف وہ لوگ کہہ گئے، بہت پتے کی باتیں وہ ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک بات ہم پروگرام میں ضرور شامل رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی سامعین کرام، اشفاق احمد صاحب اردو ادب کا بہت بڑا نام، ان کا جو زاویہ نظر ہے وہ ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے میں۔ تو آج جو آپ کو زاویہ سنایا جائے گا اشفاق احمد صاحب کا، ڈپریشن کا نشہ، یہ عنوان ہے، جی ہاں، ڈپریشن کا نشہ۔ اور ظاہر ہے یہاں جتنے لوگ ڈپریسڈ ہیں ان کو تو ضرور یہ بات سننی چاہیے، یہ ان کے پتے کی بات ہے، فائدے کی بات ہے۔ تو آپ بھی ضرور پروگرام کے دوسرے حصے میں ڈپریشن کا نشہ کے عنوان سے سنیے گا کہ اشفاق احمد صاحب اس بارے میں کیا اپنی رائے رکھتے ہیں، ان کا نقطہ نظر کیا ہے، اور اس کے بعد پھر پڑھنے کے بعد ہم بتائیں گے ہمارا اس حوالے سے نقطہ نظر کیا ہے، اور آپ لوگ سوچئے، آپ لوگ سنیے گا، بتائیے گا ہمیں کہ آپ پھر اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ کیا اس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں یا کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں سامعین کرام آج کے انتخاب میں بھی شامل ہیں، اور کیا ہوتا ہے، جی ہاں، کوئی نہ کوئی ایسی بات، کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ ذہن میں آ جائے کہ جس کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے بات کی جائے، آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے، کیونکہ آپ بڑے عقل و فہم والے لوگ ہیں، بڑی خوبصورت سماعت رکھتے ہیں آپ، بڑے حوصلے بڑے صبر کے ساتھ آپ لوگ پروگرام سنتے ہیں، تو آپ کے ساتھ بات کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ پروگرام میں آپ شامل ہو سکتے ہیں، کس طرح شامل ہو سکتے ہیں، جی ہاں، 01274-306-77 یہ ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے، آپ اس کے ذریعے پروگرام میں شامل ہو کے اپنی آراء، اپنی تجاویز ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی آپ کی فرمائش ہو तो वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं इसी नंबर के ज़रिए, या फिर कोई और बात आप कहना चाहते हैं किसी भी हवाले से जो कि ज़ाहिर है तहजीब के दायरे में रहते हुए आप बात हमसे कर सकते हैं इसी नंबर के ज़रिए 01274306677। फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि फ़ोन काम नहीं कर रहा, फिर भी हम अभी कोशिश करेंगे आपके लिए गीत लगा के कि दोबारा इसको चेक करें कि आया ये काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा। अगर काम नहीं कर रहा तो फिर हम आपको बता भी देंगे ताकि आप कॉल करने की जहमत ना उठाएं। अगर काम कर रहा है तो फिर हम आपसे गुजारिश, जाहिर है क्या गुजारिश करेंगे, हम यही गुजारिश करेंगे कि आप ज़रूर प्रोग्राम में शामिल हों, अपनी आरा अपनी तजावीज़ से हमें आगाह करें, या कोई फरमाइशी गीत सुनना है तो आप फरमाइश कर सकते हैं, आपकी फरमाइश सर आंखों पर, हम आपके लिए वो गीत ज़रूर पेश करेंगे। अपनी तरफ से तो कोशिश यही होती है सामीन कराम कि अच्छे अच्छे खूबसूरत से गीत पेश किए जाएं। जैसे हमें पिछले प्रोग्राम में याद है, नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी कॉलर ने ये ज़रूर कहा था जी आप उदास गीत क्यों नहीं लगाती, तो आप उदास गीत भी, गमगीन गीत भी लगाया करें। तो जी कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में कोई उदास गीत भी शामिल रखें। दरअसल हम चाहते नहीं हैं कि हम खुद भी उदास हों गीत सुन के और आप भी उदास हों, इसलिए कि गीतों का असर होता है, आप माने या ना माने, इतफाक़ करें या ना करें, लेकिन ये जो गीत होते हैं ना, जाहिर है ये गीत इंसानों ने लिखे, वो शायरी इंसानों की शायरी होती है, मौसीकार उस शायरी के हवाले से उसके मुताबिक उसकी धुन बनाता है, तो वो खुद ब खुद अगर उदास गीत लिखा हो तो उदास धुन बनती है, शोक गीत हो तो शोक धुन बनती है। ये तो गीत के ऊपर डिपेंड करता है ना कि उसका उस वक्त किस तरह से उसको फिल्म में फिल्माया जाएगा, मौका क्या है, माहौल क्या है, तो उसके हवाले से, उस हिसाब से। और पहले जो गीत लिखे जाते थे, शायद आपने ये बहुत बड़ा फ़र्क महसूस किया हो कि पहले गीत कहानी के मुताबिक होते थे, मुताबिकत रखते थे कहानी से, कि जैसे अगर कोई उदासी की बात आई, कोई अगर ऐसा वाक़या आ गया किसी हीरो या हीरोइन की ज़िंदगी में या किसी और किरदार की ज़िंदगी में, तो उससे जुड़ा हुआ बिल्कुल लगता था वो गीत उस सूरत हाल के ऊपर लिखा गया। अब क्या है, अब तो बस माज़र चाहेंगे, कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं बहुत बिल्कुल नए गीतों को, लेकिन ना तो उनमें कोई ख़ास शायरी होती है, कोई मकसद होता है, और ना उनमें वो क्या कहिए कि मौसीकी इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो गीत याद रहे। अब देख लीजिए इतने पुराने पुराने गीत हैं 60s के, 70s, 80s, 90s, 2000 के, अब तक आप उनको सुनते हैं आपको मज़ा आता है, आपको अच्छा लगता है, वो आपकी फीलिंग्स, आपके जो दिल की ज़बान होती है ना, मुद्दा दिल का, उसको बयान कर देते हैं इस एक गीत में, खा वो खुशी का है, खा वो गमी का है, खा वो आम हालात ज़िंदगी के बारे में है, मेहनत के बारे में है, और चीज़ों के बारे में है। लेकिन आजकल के गीत जो हैं तो बस सर के ऊपर से गुजर जाते हैं, कुछ समझ नहीं आ पाती, और वो गीत इसीलिए सदाबहार कहलाते हैं कि आज भी उनकी वही ताजगी है, वही खूबसूरती है, वही आपके दिल को वो छू जाते हैं। नए गीत, कोई कोई गीत होता है, कोई शायद सैकड़ों गीतों में से कोई एक आध गीत कि जो चार दिन, आठ दिन, दस दिन आपके जहन पर रहे या वो चले, उसके बाद क्या है कि जी बस वो कहाँ गया कुछ पता नहीं चलता। और ये गीत साल हा साल क्या सदियों से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमें अच्छे लगते हैं, हत्ता कि बहुत अच्छा लगता है जब बिल्कुल जो यंग जनरेशन है, जो टीनएजर्स हैं, वो जब कभी हम इत्तफाक हो कहीं पे कि जी वो भी इस गीत को सुन रहे हैं या पसंद कर रहे हैं इन गीतों को, तो बड़ी खुशी होती है। और यही निशानी होती है सामीने कराम एक अच्छी बात की, एक अच्छे गीत, एक अच्छी कहानी की, एक अच्छे म्यूज़िक की, कि वो हमेशा आपके दिल के करीब रहता है, आपको पसंद आता है। ये फ़र्क है नए और पुराने गीतों में। तो चलिए इस पुराने गीत से हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बहुत 70s का ये गीत है, किशोर कुमार की ज़बरदस्त आवाज़ है, आप इसकी शायरी सुनिएगा, इसका म्यूज़िक सुनिएगा, जिस तरह से ये फिल्माया गया शायद आपने देखा भी होगा, तो बहुत सब चीज़ें ही अपनी अपनी जगह कमाल हैं। चलिए हम इस गीत से प्रोग्राम को शुरू करते हैं, लीजिए इसे सुनिएगा।

मैंने कहा ना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच्ची है। खा वो गीत की शक्ल में कही गई है, लेकिन ये इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जिंदगी जो है जैसी भी हो, कभी खट्टी मीठी, अच्छी कड़वी, बाज़ोकात जो है तल्ख हो जाती है, बाज़ोकात बहुत हंसने के मौके भी जिंदगी में आते हैं। जो भी कुछ है, जैसा भी है, लेकिन जिंदगी खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं। हर शख्स की ज़िंदगी खूबसूरत है, इसलिए कि ज़िंदगी बजाते खुद एक बहुत बड़ी नेमत है। आपने खुद से तो चूज़ नहीं किया था ना कि इस दुनिया में आप आएँ, आपको ज़िंदगी मिले। तो ये जब अल्लाह ने आपको, आपके गॉड ने, भगवान ने एक आपको दी है ज़िंदगी, तो ये सबसे बड़ी नेमत है। इसकी कदर करना, इससे फ़ायदा उठाना, ये आपका काम है। और ये भी याद रखिए, ज़िंदगी इम्तिहान का है। ये नहीं है कि बस आए, खेले, कूदे, हंसे और चले गए, ऐसी बात नहीं है। आपकी ज़िंदगी का जो मकसद है, जो मकसद हयात, उसको सामने रखना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो अबदी ज़िंदगी शुरू होनी है, उसका पूरे का पूरा दारो मदार जो है, पूरा इन्हिसार, वो इस जो ज़िंदगी है ना, जो वक्ती ज़िंदगी, इसके ऊपर है। अबदी ज़िंदगी वैसी ही गुजरेगी जैसी आप यहाँ पे, अगर आप अच्छे काम करेंगे, अच्छे अमले सोले के साथ काम लेंगे, अपने ईमान के साथ, तो यकीनन आपकी जो अबदी अखरवी ज़िंदगी है, बहुत खूबसूरत होगी, और वो तो इससे हज़ार दर्जे खूबसूरत होगी। अगर अल्लाह की बनाई हुई ये आर्जी दुनिया, हम तो ये ख्याल करते हैं, हमारे अपनी सोच ये है कि वो इतनी खूबसूरत हो सकती है, तो जो एक अबदी ज़िंदगी है, जो अल्लाह ताला ने हमेशा हमेश के लिए दुनिया बनाई है, वो कितनी खूबसूरत होगी। और वो कहते हैं ना, जैसे कश्मीर जन्नत नज़ीर, और कहीं आप खूबसूरत सीन देखते हैं जहाँ पे भी, तो आप कहते हैं कि जन्नत ऐसी ही होगी। इंसान तसव्वुर कर सकता है ना, इंसान 100% तो बिल्कुल उसको नहीं इल्म कि वो कैसी होगी। कुछ मिसालें दी गई हैं, कुरान में भी दी गई हैं कुछ मिसालें। कुछ लोग वैसे भी खूबसूरत जगह को देख के समझते हैं कि ये शायद जन्नत ऐसी ही हो। कैसी होगी वो तो फिर जब जाएंगे तो पता चलेगा। तो उसके जाने के लिए टिकट जो है ना, वो क्या है? वो ईमान और अमले सवाले हैं। तो ये जहन में ज़रूर रखिए कि एक अच्छा इंसान जो बाइखलाक है, जो महज़ब है, जो केयरिंग है, लविंग है, दूसरों के साथ इंसानियत के साथ मोहब्बत रखता है, जो इंसानों का ख्याल करता है, अपने फ़राइज़ और अपने हकूक़ जो बहुत अच्छे तरीके से जानता है, और उनको बजा लाने की अपनी सी पूरी कोशिश ज़रूर करता है। बाकी जो मुश्किलात आती हैं, जो हालात व वाक़यात हो जाते हैं, मिसहैप्स होते हैं जिसे कह लीजिए, तो वो तो चलते रहते हैं, वो तो फिर मिन जानिब अल्लाह होते हैं। वो तो फिर ऊपर वाले की मर्ज़ी है ना कि किसको किस तरह से आज़माता है। अगर आप आजमाइश में, उस इम्तिहान में पूरे उतर गए, वेल एंड गुड, फिर तो आप जन्नत ही में जाएंगे। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर इंसान गलत रास्ते पर चल पड़ता है, अगर वो बातिल तरीके इख्तियार करता है, और वो शैतान के बताए हुए रास्ते को अपनाता है, तो फिर जाहिर है अपना नुकसान इंसान खुद करता है। तो ये बातें पेश नज़र रहनी चाहिए इंसान के, भूलना नहीं चाहिए। ज़िंदगी का मज़ा लीजिए, दुनिया में जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दे रखी हैं, जो आपके ऊपर फ़जल है, उसका जो करम है, ज़रूर उसका फ़ायदा उठाइए। बल्कि वो नाशुक्री होती है अगर इंसान उनका फ़ायदा नहीं उठाता। तो ये चीज़ें जहन में आपके ज़रूर रहनी चाहिए हमेशा। एक दूसरे के काम आइए। सबसे बड़ी बात ये है कि इंसान इंसान के साथ कैसा बर्ताव, कैसा सलूक करता है, ये ऊपर बैठा जो है ना खुदा, हमारा गॉड, हमारा भगवान वाहे गुरु, वो ये देखता है कि ये शख्स मेरे बनाए हुए दूसरे बंदों के साथ कैसा सलूक करता है। आया ये खुद तो खुदा बन के नहीं बैठ गया, क्योंकि कोई शख्स खुद से तो पैदा नहीं हुआ, अल्लाह ने पैदा किया। तो जब कर दिया पैदा, और दूसरे लोग भी उसी के बनाई हुई मखलूक हैं, उसी के पैदा करता है, इससे कता नज़र कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन काला है, गोरा है, जैसा भी है, सब अल्लाह की मखलूक है। उसको अपनी सारी मखलूक बहुत प्यारी है। हमेशा ये ज़ोम जो है ना इंसान के जहन में नहीं होना चाहिए, जी हम तो अल्लाह के बड़े महबूब हैं, हम तो अल्लाह के बड़े प्यारे हैं। ये अल्लाह ही जाने कौन बशर है। वो इस एक मिसरे में पूरा एक फ़लसफ़ा समो दिया गया शायर ने, कि ये अल्लाह ही जानता है कि कौन जन्नती है, कौन जहन्नुमी है, कौन कैसा है, कौन अच्छा, कौन बुरा। हम मुकम्मल तौर पर नहीं जान सकते। हम सिर्फ देखते हैं अमल, अल्लाह नीयत देखता है।
وہ خلوص دیکھتا ہے، وہ جان سکتا ہے۔ ہم کسی کے خلوص اور نیت کو جج نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے، مریخ پہ پہنچ گئی، پلوٹو پہ پہنچ جائے، جہاں بھی چلی جائے، لیکن آپ کسی کے دل کے اندر نہیں جھانک سکتے کہ کیا ہے، کیوں ہے۔ نیات کو اللہ ہی بہترین جاننے والا ہے، کیونکہ اس کا علم جو ہے مکمل ہے، قادر ہے، حادث نہیں ہے ہماری طرح، یا محدود نہیں ہے ہماری طرح۔ تو اپنی لمیٹیشنز کو بھی رکھنا چاہیے سامنے، اور جو اللہ ہے نا اس کو کم از کم جاننے اور پہچاننے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ یہ عقل شعور اسی لیے ہمیں دیا گیا کہ اس کو مانو، اس کو جانو، اس کو جان کے جانو، جان کے اس کو مانو۔ بس تھوڑا سوچیے گا اس بارے میں۔ چلیے اب ایک اور خوبصورت سا ہم گیت سنواتے ہیں آپ کو، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں سنیے گا۔ یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہماری فون لائنز جو ہیں وہ بالکل صحیح طور پہ کام کر رہی ہیں۔ آپ فون کر سکتے ہیں 01274306677 بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
11: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414760.
1: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
2: आपको नहीं पता? ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
1: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश। मैनिंगम सुपर स्टोर,
2: मैनिंगम सुपर स्टोर,
3: आपकी दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
3: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: जी समय निकराम, ज़िंदगी इम्तिहान लेती है। ज़िंदगी क्या, ज़िंदगी की हर चीज़ इम्तिहान लेती है। दोस्ती की बात आ गई, आशिकी की आ गई, मैकशी की आ गई, और ना जाने किस किस चीज़ की बात आ गई। तो वही बात आ गई ना जो हमने आगाज़ में आपसे बात की थी कि ये जो ज़िंदगी है ना, ये एक इम्तिहान का है। अब आपका काम है कि आप अपने इस इम्तिहान से किस तरह से इस ज़िंदगी से नबर्द आजमा होते हैं, किस तरह इसका सामना करते हैं, क्या आपका ईमान है, एतकाद है, यकीन है, कितनी आप कोशिश या सही जो है इस हवाले से आप करते हैं कि ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। ज़िंदगी के इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल करना आपका अपना काम है, आपकी अपनी कोशिश, अपनी काविश है। अब वक्त देखें तो बहुत मुख्तसर सा है कमर्शियल ब्रेक में। कलीम आजिज का लिखा हुआ एक कलाम है हमारे पास, वो हम आपके गोश गुजार करते हैं, यकीनन आप इसे पसंद करेंगे। कि मेरी सुबह गमे बला से कभी शाम तक न पहुँचे, मेरी सुबह गम बला से कभी शाम तक न पहुँचे, मुझे डर ये है बुराई तेरे नाम तक न पहुँचे, मेरे प्यास मेरे पास क्या वो आते, मेरा दर्द क्या मिटाते, मेरा हाल देखने को लबे बाम तक न पहुँचे, मेरे पास क्या वो आते, मेरा दर्द क्या मिटाते, मेरा हाल देखने को लबे बाम तक न पहुँचे, हो किसी का मुझ पे एहसान ये नहीं पसंद मुझको, हो किसी का मुझ पे एहसान ये नहीं पसंद मुझको, तेरी सुबह की तजल्ली मेरी शाम तक न पहुँचे, तेरी बेरुखी पे जालिम मेरा जी ये चाहता है कि वफा का मेरे लब पर कभी नाम तक ना पहुँचे। बहुत ही शिद्दत पसंदी है भाई, अच्छी बात है। मैं फुगाने बे असर का कभी मोतरफ नहीं हूँ, मैं फुगाने बे असर का कभी मोतरफ नहीं हूँ, वो सदा ही क्या जो उनके दरोबाम तक ना पहुँचे, वो सनम बिगड़ के मुझसे मेरा क्या बिगाड़ लेगा, वो सनम बिगड़ के मुझसे मेरा क्या बिगाड़ लेगा, कभी राज खोल दूँ मैं तो सलाम तक ना पहुँचे, मुझे लज्जत असीरी का सबक पढ़ा रहे हैं, मुझे लज्जत असीरी का सबक पढ़ा रहे हैं, जो निकल के आशियाँ से कभी दाम तक ना पहुँचे, इन्हें मेहरबान समझ लें मुझे क्या गरज पड़ी है, वो करम का हाथ ही क्या जो आवाम तक ना पहुँचे। आजकल के वैसे हालात में ये शेर बड़ा फिट बैठता है कि उन्हें मेहरबान समझ लें मुझे क्या गरज पड़ी है, वो करम का हाथ ही क्या जो आवाम तक ना पहुँचे, हुए फैज़ मैं कदा से सभी फैज़ याब लेकिन, हुए फैज़ मैं कदा से सभी फैज़ याब लेकिन, जो गरीब तिश्ना लब थे वही जाम तक ना पहुँचे, जिसे मैंने जगमगाया इसी अंजुमन में साकी, मेरा जिक्र तक ना आए मेरा नाम तक ना पहुँचे, तुम्हें याद ही ना आऊं यह और बात वरना, तुम्हें याद ही ना आऊं यह और बात वरना, मैं नहीं हूं दूर इतना कि सलाम तक ना पहुंचे। ये कलीम आजिज़ का कलाम था, आपके गोश गुजार किया, और गुजारिश है कि प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा ज़रूर सुनिएगा। अशफाक अहमद साहब का डिप्रेशन का जो नशा है ना, उसके बारे में बात होनी है। सुनते रहिए ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशरियात को। आपसे मुखातिब है आपकी मेज़बान उस्मा अशफाक, प्रोग्राम इंतखाब के हमरा, और आप इसे सुन सकते हैं डैब के ज़रिए भी, ऑनलाइन भी, और हमारे ऐप के ज़रिए भी। लीजिए अब हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब।
1: You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to Bradford Asian Radio
1: 1413 AM and online.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
4: And the winner is Your Business Being Heard on the Radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
7: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
8: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
7: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
8: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स,
7: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड।
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
10: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिले एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी,
11: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
12: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
11: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
12: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
13: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: You're listening to Bradford Asian Radio.
0: जी मौजूद सामीन कराम, इस वक्त आप समाप्त फरमा रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की नशियात अपनी मेज़बान उस्मा अशफाक के हमरा। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अब क्या वक्त है, किस चीज़ का वक्त है, जी हाँ, अशफाक अहमद साहब के जो जाविया होता है उसका वक्त है। और आज का जो जाविया है उसका अनवान है डिप्रेशन का नशा। डिप्रेशन का नशा क्या है, जी हाँ, जब आप पूरा ये सुनेंगे, वैसे तवील ये बाब है, कोशिश करेंगे कि आज पूरा इसे सुना दें, वरना वक्त ना हुआ तो फिर बकिया आधा जो है वो अगले प्रोग्राम में शायद आपको सुनना पड़े। कोशिश ये होगी इसे मुकम्मल कर लें, क्योंकि बात मुकम्मल अच्छी लगती है, अधूरी बात जो होती है ना इतना असर छोड़ती भी नहीं है। तो अशफाक साहब लिखते हैं डिप्रेशन का नशा में कि हम बड़ी देर से एक अजीब तरह के अजाब में मुब्तला हैं। बार बार इसका संदेशा दिया जाता है कि हमारे मुल्क में नशे की आदत बहुत बढ़ गई है, और डॉक्टर और वालदैन दोनों ही बड़े फिक्रमंद हैं, और वालदैन दानिश्वर लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि इसका कलाकामा किया जाए। मैंने भी एक सोसाइटी के साथ मिलकर इस मसले का मुताला किया। सोसाइटी ने कहा नशा बुरी चीज़ है, लेकिन इतना सा तो कौमों की ज़िंदगी में आ ही जाता है। ये बेहुदा चीज़ जो कब से चली आ रही है और मालूम नहीं कब तक चलती रहेगी। इस तहकीक के दौरान जो मैंने अजीब चीज़ नोट की वो ये कि एक और किस्म का नशा भी है, और आप मुझे इस बात की इजाज़त दें कि मैं इसे नशा कहूँ, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी में बड़ी शिद्दत के साथ असरअंदाज है। वो नशा स्ट्रेस, फिशार, परेशानी और दुख को कबूल करने का है। इसको हमने वतीरा बना लिया है, और हम समझते हैं कि जब तक हम स्ट्रेसफुल नहीं होंगे तब तक हम नॉर्मल ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। आप महसूस करेंगे कि इस नशे को तर्क करने की उस नशे से भी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं एक बार कचहरी गया, वहाँ पे मैं जब पहुँचा तो बहुत से मेरी उम्र से ज़्यादा उम्र के बाबे वहाँ बैठे थे और मुकदमे लड़ रहे थे। मैंने अपनी आदत के मुताबिक पूछा कि आप कैसे आए, कहने लगे कि हमारा मुकदमा चल रहा है। میں نے ان سے پوچھا کہ کب سے، تو بولے کہ پاکستان بننے سے 2 سال پہلے سے اور ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ سسٹم پر وہ لان تان بھی کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کس چیز کا مقدمہ ہے؟ بولے کہ ہماری 9 کنال زمین تھی، اس پر کسی نے قبضہ کر لیا۔ میں نے کہا کہ 53 سال میں 2 سال ملا کر 55 سال بنتے ہیں، آپ دفع کریں، چھوڑیں اس قصے کو۔ تو وہ بولے کہ جی اللہ کے فضل سے بچوں کا کام بڑا اچھا ہے اور میں اس کو دفع بھی کر دوں، لیکن اگر مقدمہ ختم ہو جائے تو پھر میں کیا کروں گا؟ مجھے بھی تو ایک نشہ چاہیے۔ صبح اٹھتا ہوں، کاغذ لے کر وکیل کے پاس جاتا ہوں، بات چلتی ہے، پھر شام کو گھر چلا جاتا ہوں۔ تو اس بابے کی بات سے میں نے اندازہ لگایا کہ ہمارے ہاں تو اس نشے نے خوفناک صورتحال اختیار کر لی ہے۔ سکولوں میں، ماسٹروں، گھروں میں عورتوں اور دفتروں میں صاحبوں کو یہ نشہ لگا ہوا ہے، اور کسی نے بھی اس کو چھوڑنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔

जी सामिन कराम, बात नशे की हो रही थी, डिप्रेशन की हो रही थी। तो अशफाक अहमद आगे लिखते हैं, एक ज़माने में मैं समनाबाद में रहता था। उन दिनों हमारे पास पैसे भी कम थे, लेकिन जो बोझ हमने अब अपने ऊपर तारी कर लिया है, तब ये बोझ नहीं था। मेरे एक दोस्त हैं, उन्हें आधे सर के दर्द की शिकायत है, और वो ऐसा तयशुदा दर्द है कि हफ्ते में एक मरतबा बुध के दिन शाम को 3 बजे के बाद ज़रूर होता है, और उसका हमला बड़ा शदीद होता है। लिहाजा वो साहब 2 बजे एक छोटे से स्टूल पर अपनी दवाइयाँ और एक बड़े स्टूल पर अपने रिसाले किताबें लेकर बैठ जाते हैं, और किताबों को पढ़ते हुए, मज़े की बात है कि उस दर्द के हमले का इंतज़ार करते रहते हैं। उनकी बीवी आराम करती है, उसे पता होता है कि अब उसे अटैक होगा, और ये जाने और उनका काम, लेकिन वो साहब इस भाव के इंतज़ार में बैठते हैं कि वो कब आता है। जैसे हम पुराने ज़माने में कहानियाँ सुना करते थे, तो अब वो साहब बैठे हैं, 3:30 बजे ठा करके उन्हें अटैक होता है। जब वो अटैक होता तो वो सख्त तकलीफ़ में कांपते हैं, फिर वो एक दवाई खाते, फिर दूसरी, और शाम के 6 बजे तक निढाल होकर बिस्तर पर लेट जाते, और फिर सुबह उठ के वो बिल्कुल ठीक होते। एक रोज़ मैं और मुमताज़ मुफ्ती उनसे मिलने गए तो वो अपनी दवाइयाँ रख कर बैठे थे। मैंने पूछा ये क्या है, कहने लगे मेरी दवाइयाँ हैं, मेरे ऊपर अटैक होने वाला है और मैं इन दवाइयों से इसका सद्देबाप करूँगा। मुफ्ती साहब जो थे, उन्हें होम्योपैथिक का बड़ा शौक था, तो कहने लगे कि हमारे पास एक दवाई है जो इस मर्ज़ के लिए होती है। उन साहब ने कहा कि नहीं, मेरे पास भी दवाइयां हैं, लेकिन मुफ्ती साहब गए और दवाई ले आए। उन्होंने गोल गोल मीठी सी गोलियां उनके मुंह में डाल दी। अब अल्लाह की मेहरबानी और इत्तफाक देखिए कि पहले 3:30 बजे, फिर 4, फिर 5, उन साहब ने ज़ोर से चीख मारी और परेशान होकर बोले, मेरी बीमारी कहाँ गई? यानी वो उस बीमारी के इतने आदी हो चुके थे। कहने लगे मेरे साथ तो बड़ा धोखा हो गया। उनकी बीवी कहने लगी, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उन साहब ने रात बड़ी बेचैनी में गुजारी। अगले दिन वो हॉस्पिटल गए, दवाई को दिखाया, अस्पताल वालों ने उस दवाई का टेस्ट किया और कहा ये कोई दवा नहीं है, ये तो मीठा है। उन्होंने वो मुफ्ती साहब से फिर पूछा कि आप बताएं वो क्या था, तो वो बोले कि हमारी एक मशहूर दवाई है, ख़ास तौर पर आधे सर की दर्द की शिकायत के लिए। तो वो हज़रत बोले कि मुझे ये दवाई बिल्कुल नहीं चाहिए, इसलिए कि वो बीमारी ही उनकी महबूबा हो गई थी, इतनी प्यारी कि ना उन्हें बीवी अच्छी लगती थी ना बच्चे, बस उन्हें बुध वाले दिन आने वाली इस बीमारी से इश्क था। आप अपने घरों में गौर करें, एहसास होगा हर बंदा अपनी अपनी बीमारी से चिमटा हुआ है और मस्बत ज़िंदगी गुजारने की तरफ किसी का कोई इरादा नहीं। मैं उम्र के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हूँ, लेकिन आपको बताऊँ कि 1964 में, यानी 1964 में, हमारा टीवी स्टेशन चलता था, और उस वक्त मैं जो कमाता था, जो मेरी तनख्वाह थी, और अब जो कमाता हूँ, बड़ा फ़र्क था। उस वक्त मेरी कमाई का 70% हिस्सा इन चीज़ों पर लग रहा है जो 1964 में मौजूद ही नहीं थी, और मैं हल्फिया कहता हूँ कि मैं 1964 में भी ज़िंदा था। उस ज़माने में फोटोस्टेट की मशीन नहीं थी, शैम्पू नहीं होते थे, जबकि आज टीवी के इश्तहारों से पता चलता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसाला शैम्पू का है, कि कौन सा इस्तेमाल किया जाए, और बहुत से अजाब इकट्ठे हो गए हैं। तो क्या हम इन अजाबों से बाहर नहीं निकल सकते? क्या हमारी ज़िंदगियों में खुशी का कोई दिन नहीं आएगा? ये खुशी ऐसी चीज़ है जो सिर्फ अंदर से पैदा होती है, ये बाहर से नहीं ली जा सकती। आजकल के बच्चे कहते हैं कि हमारे पास चीज़ें ज़्यादा इकट्ठी होंगी तो ज़्यादा खुशियाँ होंगी। मेरी बहू कहती है कि उसके पास पन्ने का हार हो जमुर्द का तो वो बड़ी खुश हो। वो कहने लगी कि 35,000 का है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ला दूंगा, लेकिन ये बताओ कि वो लेकर तुम कितने दिन खुश रहोगी? कहने लगी मैं काफ़ी दिन खुश रहूंगी। मैंने कहा तुम अपनी सहेलियों के सामने शेखी बिगाड़ोगी कि मेरे पास ये सेट आ गया, फिर क्या करोगी? वो मुझे कहने लगी कि पोजेशन का एक अपना नशा होता है और ये खुमार होता है कि फ़लाँ चीज़ मेरे कब्ज़े में है। अब ये बात सामिन कराम गौर से सुनने वाली है कि इंसान को पोजेशन का एक अपना नशा होता है और ये खुमार होता है कि फ़लाँ चीज़ मेरे कब्ज़े में है। मैंने कहा प्यारे बच्चे, मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि इतनी सारी कीमती चीज़ें इकट्ठी करके जब तुम सोती हो या सोने लगती हो तो इन सारी चीज़ों से तुम्हारा तसर्रुफ टूट जाता है, और मैं तुम्हें कभी सुबह जगाता हूँ तो तुम कहती हो मामू बस 2 मिनट और सोने दें। यानी जो खुशी आपके अंदर से पैदा हो रही है वो ज़्यादा अजीज़ है, और जो पोजेशन आपने इकट्ठे किए हुए हैं वो उस वक्त आप भुलाए हुए होती हैं जब सो रही होती हैं। मेरी बहू, जिसकी समझ में ये बातें थोड़ी थोड़ी आने लगी, वो कहती है कि मामू इन बातों पर अमल करके कहीं मारे ही ना जाएं।
मैं कहता हूँ मारे जाने वाली कोई बात नहीं, बल्कि आप खुश होंगे। मैंने उसे बताया कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था और इटली में था तो वहाँ मुझे घबराहट के आसार पैदा होने लगे। मेरी लैंड लेडी मुझे बता कहने लगी कि प्रोफेसर तुम्हें मसला क्या है। मैंने उससे कहा मैं परेशान हो गया हूँ, मुझ पर बड़ा दबाव है। तो वो कहने लगी कि तुम एक दिन छुट्टी कर लो। मैंने कहा मैं छुट्टी करके क्या करूँ, मैं परदेश में हूँ, मेरा दिल दफ्तर में लगता है। उसने कहा रोम इतना बड़ा शहर है, तुम घूमने जाओ और बेमकसद जाओ। मैंने कहा कि बेमकसद कैसे घूमा जाता है। कहने लगी घूमा जा सकता है, मैंने मुसलसल 23 दिन काम किया था और कोई छुट्टी नहीं की थी। मैंने अपने दफ्तर वालों से कहा कि मैं आज नहीं आऊँगा। उसके बाद मैंने क्या किया कि नए कपड़े पहने दफ्तर पहुँचा, लेकिन काम करने के मकसद से नहीं, बल्कि ये देखने कि मेरे कोलीग क्या कर रहे हैं। मैंने सोनोरीना को देखा, वो टाइप कर रही थी। तो कहने लगी मज़े कर रहे हो ना, आज छुट्टी जो है। मैंने कहा कि हाँ। फिर दूसरे दफ्तरी दोस्तों से गपशप करता रहा। वक्त गुजारने के बाद सीढ़ियाँ उतरा तो वहाँ करीब ही सांता मारिया में एक गिरजे के नीचे अंडरग्राउंड बाज़ार है, वहाँ चला गया। औरतें बेच रही थीं चीज़ें। एक खातून ने बुलाकर कहा कि तुम ये जाली के दस्ताने ले लो। कहने लगी ये तुम्हारी महबूबा के लिए हैं या मंगेतर के लिए। मैंने कहा मेरी तो कोई मंगेतर नहीं। कहने लगी बेवकूफ़ कभी तो होगी। मैंने कहा नहीं मुझे इनकी ज़रूरत नहीं, लेकिन वो इसरार करने लगी। उसने मुझे दे दिए। अब मुझे नहीं मालूम था कि किसे देने हैं। मैं दस्ताने लेकर बाज़ार से बाहर आया तो रेलवे स्टेशन के पास एक खातून एक छाबे में जर्द गुलाब का एक फूल रखकर अपना पैर खुजा रही थी। उसने मुझे कहा ये फूल बड़ा अच्छा है, तेरी बीवी के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। मैंने वो भी बड़ा खूबसूरत है कहकर ख़रीद लिया। फिर मैंने स्टेशन पर ट्राम पकड़ने से पहले अपना एक शाम का अखबार ख़रीदा और बस में बैठकर आ गया। गले में ऐनक लटकाए एक बूढ़ा आदमी बैठा वहाँ ऊँघ रहा था। मैं धड़ाम से सीट पर बैठा तो उसने आंखें खोल दी। पूछने लगा आप कैसे हैं। मैंने कहा ठीक हूँ। मैं किताब पढ़ रहा था और वो अचानक मेरे हाथ से गिर गई। मैंने उसे उठाने की जहमत गवारा नहीं की, सोचा कि कोई बंदा आएगा और मुझे उठा देगा। मैंने वो किताब उठाकर उसे दे दी। वो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर था। हम बातें करने लगे। कहने लगा मौसम बड़ा अच्छा है। जब मैं घर पहुंचा तो शाम हो चली थी। मैंने आसमान पर एक सितारा देखा जो मैंने 2 साल से नहीं देखा था। ये सितारा एक गाइड की तरह से निशानदेही कर रहा था कि मेरा घर इस तरफ है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं वो सब चीज़ें जो ली थी जब मेज़ पर रखी, तो आप यकीन करें मैं आपको सचमुच अर्ज़ करता हूँ कि मुझे वैसी खुशी अता करने वाला दिन फिर कभी नसीब नहीं हुआ, हालांकि मेरे पास कोई पोजेशन नहीं था। लेकिन अब मैं ये नशा करना नहीं चाहता जो हमारे ऊपर आयद कर दिया गया है। मेरी आपसे भी पुरजोर दरख्वास्त है कि हम दूसरे नशों की तरह तवज्जो देने की बजाय स्ट्रेस के नशे से निकलने की कोशिश करें। मैं फिर कहूँगा बड़ी तकालीफ तंगियाँ हैं, बहुत मसले मसाइल हैं, लेकिन जो परेशानियाँ हैं, बच्चों के हवाले से मुश्किलात हैं, ज़िंदगी के सफ़र में हम डिप्रेशन की ऐसी बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं जो बड़ी तेज़ी से फैल रही है। और डॉक्टर्स का ख्याल है कि 5 से 7 साल की मुद्दत में ये बीमारी लोगों में ऐसे फैल जाएगी जैसे कैंसर या एड्स की बीमारी। इस जहनी बीमारी का सद्देबाप करने के लिए मैं और लोगों के लिए भी दुआगो हूँ, लेकिन अपने मुल्क और इसके बाशिंदों के लिए ये ज़रूर तमन्ना करता हूँ कि अल्लाह ना करे हम डिप्रेशन की बीमारी में शिद्दत से मुबतला हो जाएं, जिसकी निशानदेही दुनिया भर के डॉक्टर्स चीखो पुकार करके कर रहे हैं। हमें एक ही ज़ात और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई का सहारा है जो हर वक्त हमारे साथ है। ये हमारे पास है। उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक हम अल्लाह पर इतना भरोसा नहीं करने लगेंगे जितना के फरमाने वालों ने फरमा दिया है कि यह सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। मेरे बड़े ही आसान ज़िंदगी जो बड़े थे वो आसान ज़िंदगी गुजार गए। वो कहते थे कि जो कुछ हो रहा है वो एक ख़ास स्कीम के तहत हो रहा है, जबकि मैं बदनसीब कहता हूँ कि होता है तो होता रहे, लेकिन मैं इसमें अपनी अक्ल और दानिश ज़रूर इस्तेमाल करूँगा और इस अजाब में ज़रूर मुबतला रहूँगा जिसका वस तो पूरे तौर पर हो चुका है और हम इसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। हमें रूहानियत की रस्सी थाम कर मादियत की ज़मीन के ऊपर चलने की बड़ी अशद ज़रूरत है, लेकिन यही रस्सी थामनी पड़ेगी जिसमें निजात है। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफिज़। जी सामीन कराम, ये था अशफाक अहमद साहब का जाविया डिप्रेशन के हवाले से, नशों के हवाले से, और ये बात हकीकत है, ये बात सही है।
बात यह है कि यहाँ पे जो लोग काम नहीं करते ना, जो काम करते हैं वो तो इतने बिजी होते हैं, इतने मसरूफ़ होते हैं कि वो वर्कहॉलिक बन जाते हैं, उनको काम काज के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। थोड़ी बहुत वहाँ भी ज़्यादती हो जाती है कि आप इतनी ज़्यादा काम पे तवज्जो देते हैं कि फिर अपने जो आपके घर के लोग या इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी भी आपको होश नहीं रहती। वो भी एक किस्म का नशा है, हम ये समझते हैं, या हम अपनी बात कर रहे हैं, हमारा ये ख्याल है। और दूसरे वो लोग हैं जो कुछ नहीं करते, काम काज नहीं करते, फरागत है उनके पास, वक्त है उनके पास बहुत ज़्यादा, वही वक्त डिप्रेशन बन के उनके जहन पे छा चुका है, उनके जिस्म को मुतासर कर रहा है, उनके दिमाग को, उनके दिल को, कि वो कुछ सोचना चाहते हैं लेकिन अब वो सोच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते हैं, मज़ीद उनका जहन सो जाता है, स्लो हो जाता है, सोचने की सलाहियत बाकी नहीं रहती। वो एक कहते हैं ना कि बिल्ली को देख के कबूतर जैसे आंखें बंद कर लेता है ना, तो यही हिसाब डिप्रेशन के मारे लोगों का होता है, माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ। क्योंकि इंसान जब तक खुद से ठीक होना नहीं चाहेगा, सामीन कराम, आप जितना मर्जी इलाज करवा लीजिए, जितनी मर्जी दवाइयाँ खा लीजिए, अब ठीक नहीं हो सकते। और किसी हद तक हम अशफाक अहमद की इस बात से मुत्तफिक हैं कि ये डिप्रेशन भी एक नशा ही होता है। कोई भी बीमारी हो इंसान को, इंसान उसका इतना आदि हो जाता है फिर कि वो उसे लगता है वो उसकी ज़िंदगी से अगर ये चीज़ निकल गई, अगर ये बीमारी निकल गई जिसका वो सोचता है कि उसकी ये कैफियत हो जाती है, दवाई लेनी है, डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट्स बनानी है, टेस्ट करवाने हैं, हॉस्पिटल जाना है, उनके लिए शायद यही काम है क्योंकि और कुछ करने को नहीं है ना। भरोसा अल्लाह से उठ गया, वो उस तरह से उस पर एतकाद नहीं करते। वही बात है, वो चीज़ों में खुशी तलाश करते हैं कि ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। यकीन जानिए, ये हमने एक दफ़ा तजुर्बा किया, बहुत गौर व फिक्र किया इस बात पे। आपको कोई चीज़ कितनी भी पसंद हो, कितनी भी पसंद हो, चाहे वो सस्ती से सस्ती हो या वो कीमती से कीमती हो, ये इससे कता नज़र, बस कोई चीज़ आपको बहुत पसंद आ गई, आप गए वैसे ही दुकानें देख रहे हैं, विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, या शॉपिंग के मकसद ही से गए हैं, और एक चीज़ आपके दिल को भा जाती है कि बस ये चीज़ लेनी ही लेनी है, खा ज़रूरत है खा नहीं है, आप वो चीज़, यकीन कीजिए, जब तक वो चीज़ दुकान में उस शेल्फ पे पड़ी है ना, उसकी वैल्यू है। जिस लम्हे आप उस चीज़ को ख़रीद लेते हैं, कता नज़र, वही बात हमने जो पहले कही, सस्ती है, महंगी है, मुनासिब कीमत है, वट एवर, बट द मोमेंट यू बाय दैट थिंग, आपको वही पोजेशन वाली बात आ गई, एकदम से यकीन कीजिए उस चीज़ की कीमत गिर जाती है, दैट बिकम सेकेंड हैंड। हाँ, आप ही ने ख़रीदी है, आप ही के पास आई है, आपके दिल को शायद वक्ती तसल्ली हो जाती है, खुशी मिलती होगी, ओह ये चीज़ हमें मिल गई, हम चाहते थे, हमारी ख्वाहिश पूरी हो गई, हमारी फलां जो विश थी वो अब पूरी हो गई। लेकिन कभी गौर कीजिएगा, वही चीज़ बाद में उसकी वो वैल्यू नहीं रहती, दूसरे लम्हे ही उसकी वैल्यू कम अज़ कम हो जाती है, अगर ख़त्म नहीं भी होती तो गिर जाती है। जब तक वो चीज़ आपके तसर्रुफ़ में नहीं होती, तब तक वो चीज़ आपको बहुत कीमती, बहुत अच्छी, बड़ी खूबसूरत और बड़ी पहुंच से दूर लगती है। जब आपने ख़रीद ली, बस उसके बाद बात ख़त्म। 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, महीने, 10 महीने, 2 महीने, 2 साल आप उस चीज़ की बड़ी हिफाजत करते हैं क्योंकि आपको बड़ी पसंद होती है, आप शेखी भी बिगाड़ते हैं अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में, यह हकीकत है कि जी फलां हमारे पास ये चीज़ है, आप इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उसके बाद एक वक्त आता है कि आप उससे तंग आ जाते हैं, आपका दिल भर जाता है। ये सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है, नथिंग एल्स, आप जब ख़रीद लेते हैं तो। ये हमने खुद अपना ज़ाती तजुर्बा आपको बताया कि गौर की करते हैं हम कि वो चीज़ ले आते हैं ना, तो यकीन जानिए अब हम बहुत कम शॉपिंग करते हैं, कभी ज़रूरत की चीज़ कोई हो तो ठीक है चले जाते हैं, जाहिर है शॉपिंग होती है, लेते हैं, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल शॉपिंग ही छोड़ दी, लेकिन इंतहाई कम। हाँ, ज़रूरत है ज़रूर लीजिए चीज़, ज़रूर जाइए बाज़ार, लेकिन बिला ज़रूरत बाज़ार। आपने देखा होगा बहुत से लोग आपके इर्द गिर्द होंगे कि जो जस्ट ऐसे ही, जस्ट फॉर द सेक ऑफ विंडो शॉपिंग, क्योंकि उनको आदत है, वो रोज़ जाते हैं टाउन में, रोज़ जाते हैं दुकानों में, चीज़ों को देखते हैं, कभी कभार कुछ ले लिया, नहीं भी लिया, लेकिन उनकी वो पुख्ता आदत हो जाती है, तो ये भी एक नशा है।
شاپنگ کرنا بھی ایک نشہ ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جس کے بغیر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی مشکل ہو جائے گی، آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، وہ نشہ ہوتی ہے۔ خواہ وہ بیماری ہو، خواہ وہ چیزیں ہوں، خواہ وہ ٹریولنگ ہو، اور کوئی چیز ہو، کچھ بھی ہو، انسان ذہن میں اب یہ خیال آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ صحت مند انسان کی نشانی یہ ہے کہ وہ کبھی کسی چیز کا عادی اپنے آپ کو نہ بنائے۔ ہاں، جو مجبوراً بہت دوائی کھانی ہے، آپ ڈائبیٹک ہیں، آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں، آپ کو بی پی ہے، بلڈ پریشر ہے، ایسی بیماریاں ہیں کہ جن میں مستقل دوائی کھانی پڑتی ہے، وہ تو بات علیحدہ ہے، وہ تو اور چیز ہے کہ وہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ جو فضول قسم کی کچھ کو دوائیاں کھانے کی خامخواہ عادت ہوتی ہے، نہیں بھی ضرورت ہو چلیے پیراسیٹامول ہی کھا لیجئے، وہی عادت بن جاتی ہے آپ کی، پھر آپ کو ان چیزوں کے بغیر رہا نہیں جاتا آپ سے، وہ زندگی کا لازم و مظلوم حصہ بن جاتی ہیں، ملزوم حصہ بن جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو اتنا طاقتور، اتنا اسٹرانگ، اتنا اس کی ول پاور اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ وہ جب بھی چاہے جس چیز کو بھی چھوڑ دیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، اور ہم نے دیکھے ہیں، اور خود ہم ایسا اپنا ہمارا ذاتی تجربہ، وہی بات پھر آ گئی کہ آپ کو ٹھیک ہے دوائی ملتی ہے، تھوڑا سا کٹ ڈاؤن کیجیے، پوری کی پوری، خیر اس طرح سے ہم بات نہیں کریں، آپ کا اپنا مسئلہ ہے، دوائی کی بات اور ہے، لیکن فضول میں سیلف میڈیکیشن جو ہوتی ہے نا، وہ بھی ایک بیماری ہے، اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ جتنا آپ اپنے آپ کو دوائی کے بغیر صحت مند رکھ سکتے ہیں، پرہیز سے، کیور سے، آپ تو آپ وہ کیجیے۔ لوگ ہیں، لوگوں کی یہ محبت کیا ہوتی ہے، کبھی آپ نے سوچا؟ یہ ایک عادت ہوتی ہے، نشہ ہو جاتا ہے، محبوب سے بات کرنی ہے، محبوب کا فون آ جائے، محبوب سے ملاقات ہو جائے، نہیں ہوئی تو پتہ نہیں کیا عذاب آ گیا، کچھ نہیں آنا چاہیے۔ اصل تعلق، جو اصل صحیح مضبوط تعلق ہے، جو ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا، وہ خالق اور مخلوق کا تعلق ہوتا ہے، باقی ہر تعلق، باقی ہر چیز جو ہے وہ فانی ہے، وہ آنی جانی ہے، کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی۔ جب آپ اپنے آپ کو کسی چیز کا اتنا عادی کر لیتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے نشہ بن جائے، نشہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نشہ یہی ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کی عادت ثانیہ بن جائے، آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ نشہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ نشہ آور چیزیں ہی کھائیں تو آپ اس کو نشہ کہیں گے۔ اشفاق صاحب نے یہی بات کہی اپنے زاویے میں کہ یہ جو ڈپریشن ہے، جو بیماریاں ہیں اور جو چیزیں ہیں، یہ بھی ایک نشہ ہیں۔ لوگ مقدمات لڑتے ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس اور کام جب نہیں ہوتا تو وہ اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی خاطر کسی ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں، بہانہ بنا لیتے ہیں، کیونکہ زندگی گزارنے کا مقصد بھی تو ہونا چاہیے نا۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے لوگوں کو یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ ہم کسی پازیٹیو چیز میں جو ہے نا اپنے آپ کو مصروف رکھیں، کوئی ایسا کام کریں، انسانیت کا کام کریں، کوئی اپنی جو کمیونٹی ہے، شاید معذرت کے ساتھ کہ ہمارے ملکوں میں، یعنی آپ بیک ہوم کی بات کر رہے ہیں، پاکستان ہو گیا اور دوسرے ممالک ہو گئے، وہاں پہ یہ ٹریننگ، یہ تربیت نہیں ہو پاتی ہے، نہیں دی جاتی ہے کہ آپ، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ فری سروسز دیجئے اپنی کمیونٹی کو، کیونکہ آپ کو اس معاشرے نے بہت کچھ دے رکھا ہے، تو اب آپ کا وقت ہوتا ہے کہ آپ اسے تھوڑا سا ریٹرن دی۔ یہ ہم نے یہاں آ کے سیکھا، یہ حقیقت ہے، شاید آپ نے بھی محسوس کیا ہو کہ جب آپ بیک ہوم واپس جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ جو سسٹم کی بات ہر وقت ہوتی رہتی ہے، یہی تو سسٹم ہے، اور کیا ہوتا ہے سسٹم؟ معاشرہ، انسان مل کے ہی سسٹم کو بناتے ہیں۔ یہاں لوگوں نے سسٹم بنا لیا کہ آپ والنٹری ورک کرتے ہیں، والنٹری ورکرز ہوتے ہیں، جہاں ہر ادارے میں، ہر جگہ پہ آپ کو کوئی نہ کوئی والنٹری ورک کرتا نظر آتا ہے، قطع نظر اس کی ایج کیا ہے، اس کی تعلیم کتنی ہے، یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ اگر آپ نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، آپ نے معاشرے کو کچھ نہ کچھ دینا ہے واپس، تو پھر آپ کسی بھی ایج میں ہیں، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ تو کیجئے، لیکن ہمیں عادت نہیں ہے۔ عادت کیا، ہمیں خیال ہی نہیں آتا، بس ہم لینا جانتے ہیں، ہم دینا نہیں جانتے۔ معاشرہ ایسا ہونا چاہیے، لوگ ایسے ہونے چاہیے، حکومت وقت کو یہ کرنا چاہیے، یہ ہو چاہیے چاہیے چاہیے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم وہ نہیں دیکھتے، نہ ہمارا دھیان جاتا ہے اس طرف، اس لیے کہ ہماری تربیت ایسے نہیں ہوئی۔
लेकिन अभी भी वो कहता है ना, इकबाल ने कहा था, खोल आंख, जमीन देख, फलक देख, फिजा देख, मशरक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। तो सूरज को देखिए, उससे सबक सीखिए। सूरज इज़ फॉर एवरीवन, रिगार्डलेस किसकी क्या मज़हब है, क्या एज है, कहाँ रहता है, नहीं रहता है, क्या वो सोचता है, क्या ख्याल करता है, क्या जेंडर है। सूरज सबको रोशनी देता है, सबको हरारत देता है, ज़िंदगी वहाँ पहुँचाता है।

0: 760।
1: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
2: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
3: ओपन 7 डेज 10 टिल 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड ब्रेडफोर्ड, 9627222, 9627222।
2: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
8: Listen. इसे

जी समीने का नाम ब्लड फेडरेशन रेडियो की नशियात समाप्त फरमा रहे हैं आप 1413 AM पे. यही नशियात पहुंच रही हैं डैप के ज़रिए और पूरी दुनिया में ये नशियात पहुंचती हैं इंटरनेट के ज़रिए. हमारा वेबसाइट का पता है www.bradfordasianradio.co.uk. जी तो ये हमारा पता है ऑनलाइन. सामीने के नाम आज की छोटी सी खास बात के उन्वान से लातीनी कहावत एक आपके गोश गुजार करते हैं. वो लोग कहते हैं कि जो बात अकल छुपाती है नशा उसे जाहिर कर देता है. जो बात अकल छुपाती है नशा उसे जाहिर कर देता है. ये आज की छोटी सी खास बात थी. लातीनी कहावत हमने आपके गोश गुजार की और ये बात बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल सच है. अभी जो बात पहले नशे की हुई थी वो तो खैर और तरह का नशा था, लेकिन इंसान जब नशे में होता है तो वो अपने होशो हवास खो बैठता है, फिर वो अकल की बातें नहीं करता, फिर वो बेवकूफ़ी की बातें करता है. तो इसीलिए नशे को हराम कहा गया है. इससे बचने की हर मुमकिन कोशिश इंसान को करनी चाहिए. लीजिए अब एक और बहुत खूबसूरत सा हम आपको गीत सुनवाते हैं. थोड़ा उदास गीत है, चलें सुन लेते हैं, ठीक है. क्योंकि लोग अमूमन कहते हैं जी आप दुख भरे गीत उदास गीत नहीं लगाती, तो लीजिए ये उदास सा ज़रा गीत सुन लीजिए.

जी समीने का राम दुखी सा गीत था, बहुत ही ज़्यादा दुखी था गीत था। तो अब क्या किया जाए, अब थोड़ा सा ज़रा शोक गीत लगा दिया जाए, मूड को थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्या ख्याल है आपका? जी हाँ, मूड को चेंज थोड़ा सा करते हैं। उससे पहले आगा हशर काश्मीरी का खूबसूरत सा कलाम आपके गोश गुजार करते हैं। वो लिखते हैं, सोए मैं कदा ना जाते तो कुछ और बात होती, सोए मैं कदा ना जाते तो कुछ और बात होती, वो निगाह से बुलाते तो कुछ और बात होती। गो हवाए गुलसिता ने मेरे दिल की लाज रख ली, गो हवाए गुलसिता ने मेरे दिल की लाज रख ली, वो नकाब खुद उठाते तो कुछ और बात होती। ये बजा कली ने खिलकर किया गुलसिता मुअत्तर, ये बजा कली ने खिलकर किया गुलसिता मुअत्तर, अगर आप मुस्कुराते तो कुछ और बात होती। ये खुले खुले से गेसू इन्हें लाख तू सवारे, मेरे हाथ से संवरते तो कुछ और बात होती। गो हरम के रास्ते से वो पहुंच गए खुदा तक, गो हरम के रास्ते से वो पहुंच गए खुदा तक, तेरी राह गुजर से जाते तो कुछ और बात होती। जी हाँ, सुए मैं का दाना जाते तो कुछ और बात होती, वो निगाह से बुलाते पिलाते, माजरत बुलाते नहीं, वो निगाह से पिलाते तो कुछ और बात होती। गो हवाए गुलसिता ने मेरे दिल की लाज रख ली, वो नकाब खुद उठाते तो कुछ और बात होती। ये बजा कली ने खिलकर किया गुलसिता मुअत्तर, अगर आप मुस्कुराते तो कुछ और बात होती। ये खुले खुले से गेसू इन्हें लाख तू सवारे, मेरे हाथ से संवरते तो कुछ और बात होती। गोहरम के रास्ते से वो पहुंच गए खुदा तक, तेरी राह गुजर से जाते तो कुछ और बात होती। लीजिए इसे सुनिए।

जैसा मेरे कराम क्या गीत था, जो पुराने गीत इनके सदाबहार किस लिए कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि आप जब भी इन्हें सुनते हैं एक बस लुत्फ़ आता है, शायरी कह लीजिए उनकी, उनका उनका म्यूज़िक जो होता है और जिस तरह से वो फिल्माए गए वो गीत, बहुत सादा बड़े खूबसूरत से कह लीजिए के अल्फाज में, तो ये बड़ी बात होती है। इंसान जब भी ऐसे गीत सुनता है यकीन कीजिए कि बहुत उसको अच्छा लगता है, बहुत उसको मज़ा आता है, इंसान को खूबसूरत लगते हैं ये गीत। इसी तरह से हबीब जा अल्फाज में, तो ये बड़ी बात होती है। इंसान जब भी ऐसे गीत सुनता है यकीन कीजिए कि बहुत उसको अच्छा लगता है, बहुत उसको मज़ा आता है, इंसान को

0: कैसे देखूंगा, कभी जो तुझसे मुलाकात हो गई प्यारे, न तेरी याद न दुनिया का गम न अपना ख्याल, न तेरी याद न दुनिया का गम न अपना ख्याल, अजीब सूरत हालात हो गई प्यारे। उदास उदास हैं शम्मे बुझे बुझे सागर, ये कैसी शाम खराबात हो गई प्यारे। कभी कभी तेरी यादों की सांवली रुत में बहे जो अश्क तो बरसात हो गई प्यारे। वफा का नाम न लेगा कोई जमाने में कि अहले दिल को अगर मात हो गई प्यारे।
1: 3 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
0: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
0: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

जी सामीन, हमें तो इल्म नहीं कि बहार कहाँ से होके आई, क्यों आई, कैसे आई, लेकिन अब जब वो कह रहे हैं तो बहार है। और अंदर से इंसान अगर खुश हो तो बहार ही बहार है, अगर इंसान के अंदर उदासी हो तो फिर ख़िज़ां का मौसम ही नज़र आता है। हर तरफ इंसान को और कुछ नज़र नहीं आता। ये अंदर के मौसम से बड़ा ताल्लुक़ होता है बाहर के मौसम का, ये तो यकीनन आप इस पे हमारा ख़्याल है कि मुत्तफिक होंगे आप इस बात से। तो बहरहाल जनाबा समीरा साहिबा, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजी। शायद थोड़ी लेट हो गई आप, बावजू ज़ाहिर है कोई ना कोई वजह थी, आपने बताया तो, लेकिन आप आए, बाहर आई वाली बात है। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। इंतज़ार तो हमें प्रोग्राम के आगाज़ ही से था कि आप तशरीफ़ लाएंगी, हमेशा की तरह हो नहीं सकता कि प्रोग्राम हम करें और आप शामिल ना हो, लेकिन थोड़ी सी आज ज़रा देर हो गई, लेकिन उसके लिए बहुत मशकूर हैं आपके कि जो ही आप घर वापस पहुँची अपने काम वगैरह से फारिग होके, तो आपने शिरकत की प्रोग्राम में। तहे दिल से समीरा साहिबा, आपके मशकूर व ममनून। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। जी हाँ, फ़िलहाल ये खूबसूरत सा गीत सुनिएगा, इसके बाद आपने गज़ल की फरमाइश की नूरजहाँ की आवाज़ में, तो इसके बाद हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि वो गज़ल आपके लिए पेश की जाए। उससे पहले एक बहुत खूबसूरत सी आज़ाद नज़म है और आपसे मिलता जुलता नाम है समारा ख़ान। जी, समारा ख़ान की लिखी हुई नज़म है। नमी देकर जो मट्टी को, नमी देकर जो मट्टी को मसलसल गूंथते हो तुम, बताओ क्या बनाओगे, कोई कूजा, कोई मूरत या फिर महबूब की सूरत। नमी देकर जो मट्टी को मसलसल गूंथते हो तुम, बताओ क्या बनाओगे, कोई कूजा, कोई मूरत या फिर महबूब की सूरत। सुखनवर हूँ कहो तो मशवरा एक दूँ, सुखनवर हूँ कहो तो मशवरा एक दूँ, ये घाटे का ही सौदा है। यहां मट्टी की मूरत की अगर आंखें बनाओगे, तुम्हें आंखें दिखाएगी। ये घाटे का ही सौदा है, यहां मट्टी की मूरत की अगर आंखें बनाओगे, तुम्हें आंखें दिखाएगी। तराशोगे जुबां इसकी तो तरशी झेल पाओगे, अतुरशी झेल पाओगे। अगर जो दिल बनाया तो हजारों ख्वाहिशें बनकर तुम्हें, तुमसे मांगेगी। अताए अखलत अहमर इसे खुद सर बना देगी, वहाँ अपनी मोहब्बत का जो नादिर ताज पहनाया, खुदा खुद को ही समझेगी। अभी भी वक्त है मानो, इरादा मुलतवी कर दो, अभी भी वक्त है मानो, इरादा मुलतवी कर दो, इसे मट्टी ही रहने दो। क्या खूबसूरत नज़्म है। नमी देकर जो मट्टी को मुसलसल गूंथते हो तुम, बताओ क्या बनाओगे, कोई कूजा, कोई मूरत या फिर महबूब की सूरत। सुखनवर हूँ कहो तो मशवरा एक दूँ, ये घाटे का ही सौदा है, यहाँ मट्टी की मूरत की अगर आंखें बनाओगे, तुम्हें आंखें दिखाएगी। तराशोगे जबां इसकी तो तुरशी झेल पाओगे। अगर जो दिल बनाया तो हजारों ख्वाहिशें बनकर तुम्हें, तुमसे ही मांगेगी। अताए खलत अहमर इसे खुद सर बना देगी, वहाँ अपनी मोहब्बत का जो नादिर ताज पहनाया, खुदा खुद को ही समझेगी। अभी भी वक्त है मानो, इरादा मुलतवी कर दो, इसे मट्टी ही रहने दो। जी हाँ, बेहतर यही होता है।

앞이 들었어요. 아리아 랑콜리 사와 반티니에 무자펄사 अब तो मुजफ्फर साहब खैर थोड़ा सा आप लेट हो गए, अब मैं आपकी कोई फरमाइश पूरी तो नहीं कर सकती क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। जी खुदा हाफिज़, आइंदा ज़रा जल्दी फ़ोन कीजिए।

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स।
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: यू आर लिसनिंग टू ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: 1413 AM एंड ऑनलाइन।
3: यू आर लिसनिंग टू
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد.

0: On 3am and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413am and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
7: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
7: बालियां अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
7: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
7: आपकी शान
6: हमारी आन,
7: क्वालिटी की पहचान।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
8: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
7: सोफी ज्वेलर्स?
8: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
7: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
9: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
6: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस ट्रक फोकलिफ्ट
10: टैक्सी लाइसेंस,
9: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए।
6: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड 01274201679।
9: saferaider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
5: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
4: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio,
4: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

0: to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स।
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीस कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
8: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
9: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
8: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
9: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
8: 07548419678।
9: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
11: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
12: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
11: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
12: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
13: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

ये बर्फोडेशन रेडियो की आवाज है 1413 मीडियो वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे सुना जा रहा है ऑनलाइन www.bradfordationradio.co.uk पर। इसके अलावा हमारे वो अहबाब जिनका फेसबुक अकाउंट है, मेरा पेज है आर जे रिफत अब्बास, इस पे तशरीफ़ लाइए, एक मरतबा लाइक कर लें और फिर आप हमारी लाइव नशियात में शामिल हो पाएंगे। साथ ही साथ हमारे वो अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं और आज की इस महफिल गज़ल उसने छेड़ी की इज्जत और तौकीर में इजाफा करना चाहें, हम उन्हें दिल की तमाम तर गहराइयों से खुशामदीद कहेंगे।

दोस्तों, कैसा गुजरा आपका वीकेंड मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारा वीकेंड तो बहुत ही मसरूफ़ गुजरा, बल्कि मसरूफियत में एक्स्ट्रा इजाफा ये हुआ कि हम बर्मिंघम का एक ट्रिप करके आए, डे ट्रिप, और अपने अहबाब से मुलाकात की वहाँ पर। बर्मिंघम से मेरी बड़ी हसीन यादें वाबस्ता हैं। वहाँ का जो मकामी रेडियो है, एक्सल रेडियो, उसके आगाज़ से मैं उनके हमराह था और तकरीबन 7 बरस मैं उनके साथ रहा। सो वहाँ पे भी मुझे इसी तरह से मोहब्बत और प्यार मिलता है जैसा से यहाँ ब्रैडफोर्ड में मिले, लीड्स में मिले, या अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये बड़ा करम किया है कि इंग्लैंड का कोई शहर ऐसा नहीं जहाँ ये नाचीस की आवाज़ ना गूंजी हो, चाहे वो लंदन हो, एडिनबरा हो, जहाँ जहाँ रेडियो की नशियात पहुँचती हैं हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँची और हमारे सुनने वाले हम तक पहुँचे, ये उनकी नवाजिश, करम और शुक्रिया मेहरबानी है। मौसम का अहवाल ये है कि अभी जब मैं प्रोग्राम करने आ रहा था तो तकरीबन 14 सेंटीग्रेड मौसम था। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक 19 सेंटीग्रेड तक आज टेम्परेचर जा सकता है और दिन के किसी भी हिस्से में बारिश का इम्कान भी मौजूद है। हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं, सुबह ज़रा खुनकी का एहसास हो रहा था, अब बेहतर महसूस हो रहा है, बल्कि मुझे स्टूडियो में गर्मी सी महसूस हो रही है। हमारे तमाम मेहमान जो बड़ी बाकायदगी के साथ हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत और तौक़ीर बढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाते हैं, तशरीफ़ ला चुके हैं, लेकिन उनका तारुफ हसब रिवायत एक हसीन गीत के तोहफे के बाद होगा जिसे हम किया करते हैं अपने उन तमाम चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले और प्यार करने वाले सामीन और नाज़रीन के नाम कि जिनकी आमद हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगाती है और इसकी इज्जत और तौकीर में इजाफा करती है। तो आइए आज के इस खूबसूरत दिन में और नए हफ्ते का आगाज़ इस हसीन गीत से करते हैं। और हाँ, ये गीत हम उनके नाम भी करते हैं जो हमारे नादीदा लिसनर हैं, जिनकी एक कसीर तादाद इस वक्त हमें ऑनलाइन सुन रही है। आप सबकी भी मोहब्बतों, चाहतों और प्यार के नाम।

आगाज इस उसी बीच से आपकी मोहब्बतों के नाम और अब मेहमानों का तारुफ हो जाए जो हमारी बज में तशरीफ ला चुके हैं। वकार मियां मौजूद हैं वेकफील्ड से, रियासत साहब हडर्सफील्ड से, रियाज साहब ब्रैडफोर्ड की ससीन वादी से, सुमेरा बिटिया ब्रैडफोर्ड 3 से, डॉक्टर माहरुख साहिबा ब्रैडफोर्ड की ससीन वादी से, भगत सिंह साहब मौजूद हैं लीज से, और चौधरी रुखसार अहमद साहब मैनचेस्टर के सनती शहर से। और हम आप सब अहबाब को दिल की तमाम तर गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं गज़ल उसने छेड़ी में। आप सबका मोहब्बत भरा सलाम, प्यार और ढेरों दुआओं का तोहफा हमने नज़र कर दिया है अपने तमाम सुनने वालों की। परदेसी मजीद साहब तशरीफ़ लाए हैं, आप खारियाँ गुजरात पाकिस्तान से हमारे हमराह हैं और आप सब की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम, प्यार और ढेरों दुआओं का तोहफा भेजा है। दोस्तों, हमारे ये प्यारे प्यारे सुनने वाले जब बज़्म में शामिल हो जाते हैं तो बज़्म का रंग बदल जाता है। गज़ल उसने छेड़ी की आप सब जान हैं। इंशाअल्लाह हम अपने उन तमाम अहबाब को जो हमारी बज़्म में शामिल हैं और ज़रूर शामिल करके हमें दिल की खुशी होती है। साथ ही साथ ये भी मैं आप तमाम अहबाब को बताता चलूं कि आप बिल्कुल फ़िक्र ना किया करें, जो गीत आप कहते हैं और शामिल करते हैं हमारे प्रोग्राम में और सुनना चाहते हैं उसे हम नोट कर लेते हैं और फिर हम वक्त आने पर आपकी खिदमत में उसे पेश किया करते हैं। जैसा कि हमारे बड़े खूबसूरत लिसनर हैं भगत सिंह साहब जो इस वक्त हमें लीड्स में सुन रहे हैं, उनकी रिक्वेस्ट यह है कि रिफत भाई मेरा गीत जितने जल्दी मुमकिन हो बजा दीजिएगा, इसलिए कि मैं एक घंटे के बाद पहले ही निकलना पड़ेगा, कोई अपॉइंटमेंट है उनका। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई, हम इंशाल्लाह कमर्शियल के वक्फे के फौरन बाद आपका तोहफा आपकी नज़र कर देंगे और फिर हम वकार मियां की जानिब बढ़ेंगे जो वेकफील्ड में हैं और आज फिर वो एडिनबरा स्कॉटलैंड जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी ढेरों दुआएं आपके साथ और हमारे तमाम सुनने वालों के साथ हैं। अल्लाह ताला हमारे इन सुनने वालों को हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, सेहत से रखे और नज़रें बद से बचाए। आपकी आमद ही हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाती है। इस वक्त मैं देख रहा हूँ एक कसीर तादाद ऑनलाइन सुन रही है, ये हमारे श्रोते मुजाहिद और नादीदा लिसनर हैं जिनकी मोहब्बत यह है कि सुनते हैं, शामिल होते हैं और प्रोग्राम की ज़ीनत और तौक़ीर में इजाफा करते हैं। आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, हमारी ये नशियात 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में पेश की जा रही हैं। और हाँ, यॉर्कशायर की ससीन वादी में रहने वाले हमारी स्टूडियो क्वालिटी की नशियात DAB रेडियो पर भी सुन सकते हैं और बड़ा आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अल्फ़ाबेटिकली आप B पर जाइए और लिस्ट आना शुरू हो जाएगी B के नाम से मुख्तलिफ रेडियो स्टेशंस की, और जब BFD लिखा हुआ आए तो आप समझ जाइए यह आपका पसंदीदा रेडियो स्टेशन ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो है, उसे सेलेक्ट कर लीजिए और फिर आप स्टूडियो क्वालिटी की लाइव नशियात सुन पाएंगे। साथ ही साथ हमारे वो अहबाब जो हमें इस वक्त आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं और हमारी आज की इस बज़्म की रौनक बढ़ाना चाहें, हम उन्हें दिल की गहराइयों से अपने स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 01274-30-6677 पर खुशामदीद कहेंगे। और मैं कुछ कहना चाह रहा था, एकदम जहन से निकल गया, खैर कोई बात नहीं, जब याद आएगा तो आपसे बात कर लेंगे। आपका हमारा साथ तो है 5 बजे तक ना।

0: Your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
2: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
1: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
2: बालियां अंगूठियां और हार,
1: जो दुल्हन करे सिंगार,
2: आज ही मामू काके की दुकान,
1: खालिस सोने की पहचान,
2: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
1: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
2: आपकी शान
1: हमारी आन,
2: क्वालिटी की पहचान।
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95VR, 01274491442।
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
3: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
2: सोफी ज्वेलर्स?
3: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
2: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
2: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
1: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
2: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grant Road, Bradford 7, 414-760.
1: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
2: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
1: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश मैनिंगम सुपर स्टोर।
2: मैनिंगम सुपर स्टोर,
3: आपकी दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
3: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop, the best Asian music online.
7: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

और दोस्तों अब हम आपको लिए चल रहे हैं लीज की हसीन फ़जाओं में, जहां मौजूद हैं हमारे मोहतरम जनाबे भगत सिंह साहब। उनका मोहब्बत भरा सलाम हम आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। उन्होंने ये खूबसूरत गीत सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया है, सो हम उनकी इस

डॉक्टर साहब, डॉक्टर माहरुख साहिबा कभी खाली हाथ नहीं आती। एक बेइंतहा खूबसूरत कता तमाम अदब के शदाइयों के नाम करना चाहती हैं कि आशिकी में हुस्न का अंदाज होना चाहिए, आशिकी में हुस्न का अंदाज रहना चाहिए, सोज में हल्का सा रंगे साज रहना चाहिए। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या इंतखाब है। आशिकी में हुस्न का अंदाज रहना चाहिए, सोज में हल्का सा रंगे साज रहना चाहिए, जाने कब दे दे सदा कोई हरीमे नाज से, जाने कब दे दे सदा कोई हरीमे नाज से, बज्म वालों को गोश भर आवाज होना चाहिए। आशिकी में हुस्न का अंदाज होना रहना चाहिए, सोजगी में हल्का सरंगे साज रहना चाहिए, जाने कब दे दे सदा कोई हरीने नाज से, बज्म वालों को गोश भर आवाज होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका तोहफा हमने उनकी नज़र कर दिया है। सामईन और नाजरीन की अब आपका पसंदीदा गीत लेकर हाजिर हैं। आपकी आमद का हमेशा की तरह बेइंतहा शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त में से इतना वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत तौक़ीर बढ़ाती हैं। तोहफा हाजिर है, कबूल फरमाइए।

0: दोस्तों, अब हम आपको लिए चल रहे हैं वेकफील्ड की हसीन फ़ज़ाओं में, जहां हमारे मोहतरम लिसनर वक़ार अहमद साहब मौजूद हैं और सुनना चाहते हैं ये खूबसूरत गीत। कहते हैं कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा, आज एडिनबरा का सफ़र है, हमारी दुआएं बग़ैर कहे हमेशा आपके साथ हैं। हैव अ नाइस एंड सेफ जर्नी। और परदेसी मजीद साहब, आपका तोहफा हम अपने सेगमेंट वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग के बाद पेश करेंगे, इसलिए कि मैं देख रहा हूँ कि ये गीत, बहरहाल मैं कोशिश करूँगा, वादा नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं वेकफील्ड की हसीन फ़ज़ाओं में। वक़ार मियाँ, आमद का बहुत शुक्रिया।
1: Dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, d

दोस्तों, अब हम चल रहे हैं कमर्शियल के वक्फे की जानिब। परदेसी मजीद साहब, अब हम वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग है, जो इसके बाद कमर्शियल के बाद सेगमेंट होगा, फिर हम आपका तोहफा आपकी नज़र कर पाएंगे। फिल वक्त तो हम आप सब से इजाज़त के तलबगार हैं कि कमर्शियल के वक्फे की तरफ बढ़ा जाए। आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की हसीन वादी में। दुनिया के चार कोनों में इस वक्त ऑनलाइन सुना जा रहा है www.bradfordasianradio.co.uk पर। इसके अलावा हमारे वो अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में हमारे प्रोग्राम से मुस्तफीज हो रहे हैं, हम उन्हें भी दिल की गहराइयों से गज़ल उसने छेड़ी की जीनत और तौकीर में इजाफा करने के लिए दावत दे रहे हैं। हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274306677। तो याद रखें, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। आदाब उन तमाम अहबाब की खिदमत में जिन्होंने अभी अभी प्रोग्राम गज़ल उसने छेड़ी में शिरकत की है। मैं हूँ आपका अपना रिफत अब्बास।

0: listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online.
2: You're listening to
3: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
7: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
8: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
7: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
8: 30 वेटले हिल, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड।
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
10: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्स अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी,
11: आपकी दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
12: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
11: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
12: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
13: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online.
0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
14: दोस्तों, आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर। यॉर्कशायर की सचिन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त से सुना जा रहा है ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर। इसके अलावा हमारे वह अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं, और आज की महफिल गज़ल उसने छेड़ी की इज्जत व तौकीर बढ़ाना चाहें, हम उन्हें दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहेंगे। वक्त हुआ जा रहा है आपके पसंदीदा सेगमेंट वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। हमारे इस सेगमेंट का मकसद खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करना है अपनी उन ख्वातीन शोरा को कि जिनकी आमद ने अदब के मैदान में एक धूम मचा दी है और जिनके अशार सोच फिक्र सुनकर ये महसूस होता है कि आने वाला कल इनका होगा। हमारी आज की शायरा जिन्हें हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, इनका ताल्लुक गोरखपुर से है। बहुत खूबसूरत सोच फिक्र और अंदाज की मालिक हैं। मुझे यकीन है कि इनका कलाम आपको बहुत महसूस करेगा। तशरीफ लाती हैं हमारी आज की मेहमान शायरा मोहतरमा नुजहत अंजुम। तशरीफ आ रही हैं मोहतरमा नुजहत अंजुम।
5: सबसे पहले गज़ल की चंद शेर हाजिर कर रही हूँ, समाज फरमाए फिर मुकम्मल गज़ल। अर्ज़ किया है दर्द को ये दिले याकूब बना देता है, सब्र को हजरते अय्यूब बना देता है। दर्द को ये दिले याकूब बना देता है, सब्र को हजरते अय्यूब बना देता है। ये कलंदर कभी मजजूब बना देता है, इश्क इंसान को क्या खूब बना देता है। इश्क इंसान को क्या खूब बना देता है। और कभी लैला कभी शीरीं कभी मुमताज़ महल, कभी लैला कभी शीरीं कभी मुमताज़ महल, मुझको क्या क्या मेरा महबूब बना देता है।
15: अरे वाह, क्या कहने मोहतरमा, बड़ी अच्छी अच्छी बड़ी सच्ची सच्ची बातें बता रही हैं, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह वाह,
5: बहुत बहुत शुक्रिया। सच्ची सच्ची बातों को परखने का आपके पास काफ़ी अच्छा तजुर्बा है।
15: इरशाद,
5: एक मुकम्मल गज़ल आप सबकी नज़र कर रही हूँ। जा मैं साह तेरी आँखों से अता हो जाए, जा मैं साह तेरी आँखों से अता हो जाए, जा मैं सा तेरी आँखों से अता हो जाए, होश मौजूद रहे और नशा हो जाए। होश मौजूद रहे और नशा हो जाए, इस तरह मेरी तरफ मेरा मसीहा देखे।
15: वाह,
5: इस

0: दर्द दिल ही में रहे और दवा हो जाए, जिंदगानी को मिले कोई हुनर ऐसा भी।
1: क्या कहने, वाह वाह।
0: जिंदगानी को मिले कोई हुनर ऐसा भी।

0: और इस गजल का आखिरी शेर,
1: उसको मैं देखूं तो इस तरह से देखूं नुजहत,
2: क्या कहने।

0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या कहने नुजहत साहिबा, वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
1: बहुत बहुत शुक्रिया।

0: बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना।
1: मोहतरमा, गीत के लिए फरमाइश कुछ लोग कर रहे हैं, लगता है पहले भी आपसे मुलाकात कर चुके हैं। गीत सुना दीजिए।
0: जी मैं गीत ज़रूर हाजिर करूंगी। जी ज़रूर मैं गीत हाजिर करती हूँ। एक गज़ल के लिए हुक्म हो रहा है मशकूर भाई का, मैं आपसे की इजाज़त हो तो हाजिर कर दूँ। रस्म वफा निभाना तो गैरत की बात है,

0: है। और इस गजल का आखिरी शेर,
1: इरशाद।
0: सौदा किसी से मैंने अना का नहीं किया।
1: बहुत अच्छे, वाह वाह।

वास्ते इज्जत की बात है, नज़हत ये मेरे वास्ते इज्जत की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गीत के लिए अभी हुक्म हो रहा था, मैं वही गीत हाजिर कर देती हूँ। बबुआ कर ले अब तैयारी, बबुआ कर ले अब तैयारी, बबुआ कर ले अब तैयारी।

0: यारी। और इस गीत का आखिरी बंद,
1: इनायत,
0: अल्लाह पाक ने दुनिया क्यों बनाई, हम सब इस दुनिया में क्यों आए, आखिरी बंद समाप्त करें।

और दोस्तों अभी आप सुन रहे थे वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, खराज तहसीन हम पेश कर रहे थे नौजवान शायरा जिनका ताल्लुक गोरखपुर हिंदुस्तान से है, फ्राक गोरखपुरी के शोहरा आफाक गांव से, डॉक्टर नुजहत अंजुम अपने कलाम से आपको नवाज रही थी, जिसे बेइंतहा सराहा है हिमायूं परवेज़ साहब ने जो अमरोहा से अभी अभी हमारी बज़्म में शामिल हुए हैं, और मोहब्बत भरा सलाम उन्होंने आप सब की खिदमत में पेश किया है। तशरीफ लाए हैं नज़ीर अहमद साहब, आप हमेशा की तरह लैया पंजाब पाकिस्तान से हमारी बज़्म में शामिल हुए हैं और हमेशा मुझे दुआओं से नवाजते हैं कि अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह ताला नज़ीर अहमद साहब आपको भी सलामत रखे, सेहत से रखे, खुश रखे और हमेशा अपने ज़मान में रखे। अब चल रहे हैं हम उस गीत की जानिब जिसे सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया था हमारे मोहतरम लिसनर और कॉलर जनाब शकील साहब ने। आप बर्नली से हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाकर इस प्रोग्राम की इज्जत और तौकीर बढ़ाते हैं, और याद दिलाया उन्होंने कि आज सुरैया जो मारूफ मकबूल हरदिल अजीज़ और महबूब सिंगर थी उनकी सालगिरह भी है। तो सुरैया तो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद नहीं, तो उनके लिए आइए सालगिरह का तोहफा ये खूबसूरत दुआ की शक्ल में पेश कर देते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और मगफरत फरमाए। याद दहानी का शकील भाई बेइंतहा शुक्रिया, आपका तोहफा लेकर हाजिर हूँ, कबूल फरमाइए।

0: और दोस्तों ये पसंद थी हमारे शकील भाई की बर्नले से, आपकी आमद का बेइंतहा शुक्रिया। वक्त हुआ जा रहा है कमर्शल्स का, कमर्शल के फौरन बाद हम आपको मैनचेस्टर की सनती फ़ज़ाओं में लिए चलेंगे, जहां हमारे मोहतरम चौधरी रुखसार अहमद साहब मौजूद हैं, उनका तोहफ़ा उनकी नज़र करेंगे। हुमायूं परवेज़ साहब अमरोहा से हमारे दरमियान मौजूद हैं और उनका मोहब्बत भरा सलाम तमाम सामईन और नाज़रीन की खिदमत में कबूल हो। वालेकुम अस्सलाम मियां, जीते रहिए, हमारी ढेरों दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। आप सुन रहे हैं ब्रेडफर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में और दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे सुना जा रहा है ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर। हम इंशाल्लाह इस तोहफे के बाद जो हमें नज़र करना है चौधरी रुखसार अहमद साहब की एक हसीन गीत का तोहफा अपने तमाम नादीदा लिसनर्स जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं उनकी मोहब्बतों के नाम करेंगे।
1: 413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677. Ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 30

0: Store next to Dulan Boutique, White Abbey Road, Bradford, BD88JL. Bukhari, pasand aapki aur hamari. Bukhari. दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
1: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
0: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
1: बालियां, अंगूठियां और हार,
0: जो दुल्हन करे सिंगार,
1: आज ही मामू काके की दुकान,
0: खालिस सोने की पहचान,
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
0: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए,
1: आपकी शान
0: हमारी आन,
1: क्वालिटी की पहचान,
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442,
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
2: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
1: सोफी ज्वेलर्स?
2: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ,
1: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014, सोफी ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
0: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
1: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
3: टैक्सी लाइसेंस,
1: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
0: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम, सेफ राइडर,
1: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए,
0: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679,
1: safewayrider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
0: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99,
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ, बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN, बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए, नंबर मिलाइए 07414260 07 8

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
2: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
3: ओपन 7 डेज 10 टिल 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पौंड ब्रैडफोर्ड, 9627229627222।
2: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
8: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

आइए दोस्तों, अब आपको हम मैनचेस्टर के सनती शहर लिए चलते हैं, जहां मौजूद हैं चौधरी रुखसार अहमद साहब। उनका तोहफा उनकी नज़र कर रहे हैं। उससे पहले हम खुश आमदीद कहना चाहेंगे, सिराज मुनीर साहब तशरीफ़ लाए हैं। आप हमारे हमराह डंकास्टर सिटी से मौजूद हैं और आप सबकी खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम पेश किया है। आइए चलते हैं मैनचेस्टर और चौधरी रुखसार अहमद साहब का तोहफा उनके हवाले करते हैं।

0: दोस्तों, अब हम आपको लिए चल रहे हैं मिडिल्सब्रा, ब्रेडफोर्ड की सचिन वादी से हमारी बहुत ही प्यारी सी बिटिया बावर्ची खाने की रानी तशरीफ ला चुकी हैं आगाज़ प्रोग्राम में ही, और अपनी कज़न्स के नाम इस खूबसूरत गीत को तोहफ़तन मिडिल्सब्रा में उनकी कज़न्स हैं वो सुन रही हैं, उनके नाम करना चाह रही हैं। और इंशाल्लाह कमर्शियल के वक्फे के बाद हम आपको खारियाँ गुजरात पाकिस्तान लिए चलेंगे, जहाँ मौजूद हैं परदेसी मजीद साहब और उनका तोहफ़ा उनकी नज़र करेंगे। बढ़ते हैं, बिटिया जीती रहो, आमद का बहुत शुक्रिया, तुम्हारा तोहफ़ा हाजिर है।
1: इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, समझा।

0: the best Asian music online.
1: You're listening to Bradford Asian Radio.
2: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स।
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज़ सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
8: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
8: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
13: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio,
2: 1413 AM and online.
14: और दोस्तों, अब चलते हैं अपनी पसंद के गीत के इंतज़ार में मुंतजर परदेसी मजीद साहब, खारियां गुजरात पाकिस्तान में। उनका तोहफा, उनकी नज़र करते हैं। बहुत इंतज़ार करवाया है हमने आपको, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, आपका तोहफा हाजिर है। आपकी आमद का बे इंतहा शुक्रिया। तो फाकबूल कीजिए।

दोस्तों हो सकता है इस गीत पर पेज ऑफ हो जाए तो मैं फिर बंद करके ऑन कर लूँगा, क्योंकि अब हम चल रहे हैं आपको लेकर ओल्डहम, जहाँ मौजूद हैं मोहम्मद अय्यूब चौहान साहब और सुनना चाहते हैं ये गीत। कल ही कहते हैं मैंने ये फिल्म देखी है और मुझे बहुत अच्छी लगी, उसी फिल्म से उन्होंने ये खूबसूरत गीत मुंतखब किया है। अय्यूब चौहान साहब, हम आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हुए आपका तोहफा आपकी नज़र कर रहे हैं, कबूल फरमाइए।

और दोस्तों आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त से सुना जा रहा है www.bradfordasianradio.co.uk पर। हम हस्बे वादा इंशाअल्लाह अज़ीज़ कमर्शियल के वक्फे के बाद तो हम हमारी प्यारी सी बहना शहनाज ब्रैडफोर्ड 18 से तशरीफ लाई हैं और वो हमारे प्रोग्राम के हवाले से हमेशा अपनी भूली बिसरी बचपन की यादों को ताज़ा करती हैं। आज भी उन्होंने एक ऐसा ही खूबसूरत गीत मंतखब किया है, हम उन्हें ज़रूर बचपन की हसीन यादों में ले जाएंगे। बेइंतहा शुक्रिया प्यारी बहना ढेरों दुआएं देने का, हमारी भी ढेरों दुआएं अपनी इस प्यारी सी बहना के साथ हैं। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, सेहत से रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, तुम्हारी जोड़ी को सलामत रखे और बच्चों की बहार दिखाए। आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर। हमारी ये नशियात यॉर्कशायर की इस हसीन वादी में सुनी जा रही हैं।

0: दोस्तों, एक ऐलान आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। कल से मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो रहा है और आप सब जानते हैं कि हम बरसों से इस अजीम माह मुकद्दसा, माह मुतबर्रका और हिजरी साल के पहले महीने मुहर्रमुल हराम में इसके एहतराम और इसकी अकीदत में 10 दिन तक अपनी नशियात मौसीकी की बंद रखते हैं। और आप सबको याद दिलाना था कि कल से हमारे ये मौसीकी के प्रोग्राम 10 दिन तक मुहर्रमुल हराम के एहतराम में बंद रहेंगे। लेकिन हाँ, मैं और हमारे तमाम प्रोग्राम, हम सब आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे और बारगाहे इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत अथार की अजीम कुर्बानी की याद को इसमें ताज़ा करते रहेंगे। आप सब जानते हैं कि कल से हम गज़ल उसने छेड़ी नहीं रोशनी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे, जिसमें न सिर्फ हम शहदाए इकराम को नजराना अकीदत पेश करते हैं, बल्कि मेरी कोशिश होगी कि हमारे यहाँ से एक सिंफ बिल्कुल तकरीबन इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है, जिसे आप, हम और हम सब जानते हैं, मसीहए तहतुल लफ्ज़। मेरी कोशिश होगी इंशाअल्लाह कि मसीहए तहतुल लफ्ज़ की यादों को ताज़ा कराया जाए आपको। तो कल से इंशाअल्लाह गज़ल उसने छेड़ी 10 दिन के लिए और हमारे तमाम मौसीकी के प्रोग्राम 10 दिन के लिए बंद हो जाएंगे। और आप सबको मैं मुहर्रमुल हराम की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। नया साल होगा, लेकिन क्योंकि इसमें इस कदर अज़ीम सानहा कर्ब व बला का हुआ कि इसकी हम खुशियाँ नहीं मना पाते, बल्कि इनके सोग में हम एहतराम में 10 दिन तक अपनी नशियात में ये ख्याल रखते हैं कि सोगर अर्न जो है इसे अकीदत इंतहा और प्यार के साथ मना सकें।
1: Your business being heard on the radio. Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
2: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
3: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
2: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे
3: बालियां गुड।
2: नेक्स्ट टू दुल्हन बूटी, व्हाइट एबी रोड ब्रेड BD8JL, पर आपकी और हमारी खरी। दुल्हन वो जो मन भाए,
3: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
2: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन।

0: रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
1: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
0: सोफी ज्वेलर्स?
1: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
0: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD9 4QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
0: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
3: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
0: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

तो आइए दोस्तों बैडफोर्ड 18 चलते हैं और शहनाज बहना का ये सपना पूरा कर देते हैं इसकी ताबीर कि बचपन की हसीन यादें एक मरतबा फिर उनसे आन जुड़ें। जीती रहो, खुश रहो, हमारी ढेरों दुआएं प्यारी बहना शहनाज बैडफोर्ड 18 से आपके साथ हैं।

राइज दोस्तों, अब हम आपके लिए चलते हैं लिया पंजाब पाकिस्तान, जहां मौजूद हैं हमारे खूबसूरत लिसनर जनाब नज़ीर अहमद साहब। इनकी मोहब्बत है, चाहत है और प्यार है कि ये इस कदर बाकायदगी के साथ सात समंदर पार से तशरीफ़ लाकर हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत और तौक़ीर बढ़ाते हैं। रियासत साहब कहीं बाहर गए हुए थे, तशरीफ़ ला चुके हैं, तो इंशाल्लाह इस तोहफे के बाद रियासत साहब आपका और आपके अहल खाना का तोहफा आपकी नज़र किया जाएगा। और अब चलते हैं अपने नज़ीर अहमद साहब आपके तोहफे की जानिब। कबूल कीजिए।

दोस्तों, ये आवाज़ थी और कलाम था डॉक्टर सतेंद्र सरताज का। बहुत खूबसूरत गाते हैं और इनके अशआर और इनकी खूबसूरत सहर अंगेज़ मत भरी आवाज़ दिलों में उतर जाती है। आप सुन रहे थे गज़ल उसने छेड़ी, मैं हूँ रिफत अब्बास। अब वक्त आ गया है कि हम आपसे इजाज़त मांगें। याद रहे कि कल से मुहर्रम और हराम का आगाज़ हो रहा है और कल से 10 दिन तक हम खुसूसी प्रोग्राम 2400 घंटे आपकी खिदमत में मुहर्रम और हराम और उस अजीम क़ुरबानी की याद को ताज़ा करने के लिए जो कर्बो बला में अंजाम दी गई, 10 दिन तक आप हमारा भी प्रोग्राम रोशनी सुनेंगे, खुसूसी प्रोग्राम होगा मुहर्रम अल हराम का। साथ ही साथ हमारे रेडियो स्टेशन से 10 दिन तक एहतरामन तमाम म्यूज़िक शो जो हैं, फिल्मी म्यूज़िक जो हम आपकी खिदमत में पेश किया करते हैं, वो मफकूद रहेंगे। और अब प्रोग्राम के इख्तिताम पर आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से बेइंतहा शुक्रिया कि आप लोगों की आमद ने हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगाए और इसकी इज्जत और तौक़ीर में इजाफा किया। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, नज़रे बद से बचाए, सेहत से रखे, अब उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मोहब्बतों के पैगंबर रिफ़त अब्बास को अब इजाज़त दीजिए।

0: 1:03 a.m. and online.
1: You're listening to
2: Bedford Asian Radio on 14:13 a.m.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
7: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
8: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
7: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
8: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स।
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड 3।
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
10: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
11: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
12: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
11: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
12: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
13: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 14:13 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
14: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 14:13 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio.
0: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रैडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात।
8: इनकी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स।

0: लाइसेंस
1: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
2: 30 साल ब्रेड फ्रूट का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफे राइडर
1: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
2: 33 वेटले लैंड ब्रेड फ्रूट 01274201679
1: saferaider.co.uk। सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN। बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
5: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
6: You're listening to Bradford Asian Radio,
4: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.
6: You're listening to Bradford Asian Radio,
4: 1413 AM and online.
6: You're listening to Bradford Asian Radio,
4: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
8: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
9: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
8: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
9: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
8: 07548419678।
9: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
11: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
12: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
11: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
12: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
13: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus, or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today.

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760.
1: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
2: आपको नहीं पता? ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
1: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश। मैनिंगम सुपर स्टोर,
2: मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
3: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
5: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio,
7: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

अपुन जैसे टपोरी को क्या मालूम साला प्यार किस चिड़िया का नाम है। लुक्खागिरी करके अपना टाइम पास होता है, बीड़ी पान चाय मिलता है, बस अपुन खुश। ये प्यार का लफड़ा लोचा काई को? काई को? अरे काई को रे,

0: मैं चले लिए बाप
1: अब उनका खोपड़ी सबका कल्लन को पकड़ो और बोला इधर आ सारे तेरे को कयामत दिखाता हूँ सारे को इतना धोया अभी तक थोपड़ा वाकड़ा है और आज तक अपुन के साथ उसका 36 का आंकड़ा है समझा समझा क्या
2: फिर हेमा का क्या हुआ

साला एक सपना देखा था, लेकिन मां कसम एक आंसू नहीं रोया। काय को रोएगा, काय को रोएगा, साला अपुन ही जेड़ा था ना। अगले दिन

You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن لا

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
10: बस ट्रक फोकलिफ्ट
11: टैक्सी लाइसेंस,
10: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड 01274201679।
10: saferaider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
12: सोने दे गजरे,
10: ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: 3 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
2: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
3: ओपन 7 डेज 10 टिल 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
2: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
8: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
9: You're listening to Bradford Asian Radio,
7: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.
2: You're listening to
3: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स।
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज़ सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो,
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
8: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
8: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
13: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाई दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: You're listening to Bradford Asian Radio,
4: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
5: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
6: And the winner is...
7: And the winner is...
8: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
9: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
10: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
11: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
10: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
11: बालियां अंगूठियां और हार,
10: जो दुल्हन करे सिंगार,
11: आज ही मामू काके की दुकान,
10: खालिस सोने की पहचान,
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
10: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
11: आपकी शान
10: हमारी आन,
11: क्वालिटी की पहचान।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274 491 442।
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
12: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
11: सोफी ज्वेलर्स?
12: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
11: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
13: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
14: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
10: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
14: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: raisingexploders.co.uk
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
5: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स।
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बोबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 26007 8।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444. Or donate online at ikca.org.uk.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बन के खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
10: बस ट्रक फोकलिफ्ट
11: टैक्सी लाइसेंस,
10: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड 01274201679।
10: saferaider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
5: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है
2: अल्लाह

أشهد أن لا

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स।
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 3499, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
8: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
9: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
8: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
9: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
8: 07548419678।
9: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
11: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
12: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
11: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
12: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
13: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलेन, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स की स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स,
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760.
1: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
2: आपको नहीं पता? ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
1: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश। मैनिंगम सुपर स्टोर,
2: मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
3: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है
2: अल्लाह

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577।
8: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 2600 78।
11: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी,
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाई दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
9: बालियां अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
11: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
12: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
11: बस ट्रक फोकलिफ्ट
13: टैक्सी लाइसेंस,
11: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
12: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
11: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
12: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड 01274201679।
11: saferaider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
12: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
11: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
2: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
3: ओपन 7 डेज 10 टिल 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पौंड ब्रेडफोर्ड, 9627229627222।
2: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
8: Listen on your PC or laptop, the best Asian music online.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 2600 78।
11: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो,
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: यू आर लिसनिंग टू ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: 1413 AM एंड ऑनलाइन।
3: यू आर लिसनिंग टू
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
11: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
10: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
9: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
10: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
9: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
10: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
9: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
11: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
10: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
9: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
10: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
9: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 2600 78।
12: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shokut Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444. Or donate online at ikca.org.uk.
13: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
14: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
13: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
14: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
15: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
16: Allah,
17: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.